ये जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो बहुत बलवान होता है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, परंतु सामान्य प्रारब्ध को मनुष्य उपासना साधना से बदल सकता है, ऐसा इतिहास में पुराण में ये बातें मिलती हैं। जब आठवां श्लोक देख लें, जिसमें से चार शब्द पर विचार हो चुका है। महोक्ष, महोक्ष का अर्थ है वेदों का जो प्रधान ओंकार। वेदानाम त्रिपदासारम तस्याम ओंकार उच्यते, ओम नामासी तुमेवासी आत्मा द्वेतो निरंजन। वेदों का सार ओंकार है, ओंकार के द्वारा ही हम परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। कठोपनिषद में आता है एतद् देवा आलंबनम श्रेष्ठ, एतद् देवा आलंबनम परम। इसी आलंबन से अपर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और पर ब्रह्म को। यदि आपकी भावना संसार विषयणी है तो ओंकार के द्वारा संसार को उपलब्ध होते, अपने कामनाओं को पूरा करते हैं। यदि निष्काम है तो इसी आलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महोक्ष का अर्थ है जो वेदों में ऋषभ है ओंकार, इसी आलंबन से आदमी शिव तत्व को उपलब्ध होता है। खटवांग का अर्थ था मोक्ष, परशु का अर्थ हमने किया था ये विवेक, नित्यानित्य विवेक ये परशु है, जिसको असंग शास्त्र भी गीता में कहा गया है। अजीनम का अर्थ है नाम रूपात्मक, ये जो आपका हाथी का समझो कि ये चमड़ा है, वस्त्र है। भस्म का अर्थ था चिता भस्म, नाम रूपात्मक ये जो आवरण है जीव का, यही समझो कि आपका भस्म है, देहाध्यास की निवृत्ति। जब नाम रूपात्मक प्रपंच का बाध हो जाता है, नाश हो जाता है, तो केवल एक चैतन्य ज्ञान बचता है। जैसे कोई वस्तु जल जाती है तो जलने के बाद राख बचती है, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा नाम रूपात्मक प्रपंच का जब बाध हो जाता है तो केवल एक अधिष्ठान ज्ञान बचता है। वही ज्ञान भगवान शंकर का श्रृंगार है, भस्म है। फणिना, फणिना का होता है सांप। भगवान शंकर इस सांप को अपना आभूषण बनाया, सर में भी बांध रखे जूला की जगह, हाथ में भी है कंगन की जगह, कान में कनफूल की तरह भगवान शंकर का आभूषण इस सांप है। इस सांप का अर्थ क्या होता है? फणिना ना, सांप का भी एक विलक्षण अर्थ है, रामायण में भी आता है। गरुड़ जी कहते हैं संशय सर्प ग्रसेव मोहि ताता, ताहि उपजहि दुख बहु ब्राता। जो गरुड़ जी सांपों के कट्टर दुश्मन, सांप जिनका आहार, वे गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे भाई, मुझे संशय रूपी सांप ने ग्रस लिया है, डस लिया है। ये संशय यहां पर सांप है, उसी संशय रूपी सांप को भगवान शंकर ने अपने कानों का भूषण बनाया है। जब साधक को परमात्मा के ऊपर संशय होता है, श्रेय के ऊपर, कि सत्य संसार है या परमात्मा है, इस प्रकार का संशय होता है। जब वेदांत का श्रवण करते हैं, श्रवण हम कान से करते हैं, तो जब मनुष्य वेदांत का श्रवण करता है तो संशय रूपी सांप आभूषण बन जाता है। दूषणोपि भूषणायते, हलाहल विष जो संसार को नष्ट कर सकता है, वही विष भगवान शंकर के कंठ का आभूषण बन गया। जो टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है उसको भगवान ने समझो कि अपने सर पर धारण किया, विशोभित हो गया। न्यायिक दार्शनिकों ने मंगलाचरण में लिखा है कि चूड़ाकृत विधु बलैकृत वासुकी भव भवत भव्याय लीला तांडव पंडित। न्याय दर्शन का मंगलाचरण है। चूड़ा मणिकृत विधु, चंद्रमा को तो अपने सर का समझो कि एक तरह से सजावट के लिए चूड़ामणि बनाया। बलैकृत वासुकी, और उस चूड़े को पहले माताएं बांधती थी ना ऊपर, तो उस चूड़ा के ऊपर बलई मल्ल की वासुकी नाग से उसको बांध दिया। ये वासुकी क्या है? वासुकी शब्द का अर्थ है
वासयति सर्वान अस्मिन् संसारेति वासुकिः। वासु शब्द है ना, बस निवासी धातु है, बस निवासी धातु से अर्थ निकलता है वासयति सर्वान अस्मिन् संसारेति वासुकिः।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव शिव हर हर, प्रेजेंटेड बाय शिवनाथन पत्तुमरे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ब्रूवृत सख्यम् विश्वो ओ राज ईशुध्यति द्युम्नम् ब्रूणीत पुष्यसे स्वाहा। ऋक्सामजो शिल्पे स्थस्थे वामाराभेते मा आपातम् आस्य।

0: நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanakasabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये, गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां, श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे, नित्यं सन्निहितं किला कलयितुं क्षीराभिषेकादरं, श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां, ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய சதுர்த்த ஸ்லோகஹ. ஸ்லோகேஸ்மின் ஸ்வ புத்ரஸ்ய அபிமன்யோர் மிருத்யுரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய அர்ஜுனஸ்ய ஆர்த்திஹந்தாரம் பாரத யுத்தே தஸ்ய விஜயப்ராப்த்யர்த்தம் தஸ்மை பாசுபதாக்கியம் ஸ்திரம் ததத்தம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. வியூடம் த்ரோணஜயத்ரதாதி ரதிகைஹி சைன்யம் மஹத்கௌரவம் த்ருஷ்ட்வா கிருஷ்ணசஹாயவந்தமபிதம் பீதம் ப்ரபன்னார்த்திஹா பார்த்தம் ரக்ஷிதவா நமோக விஷயம் திவ்யாஸ்திரமுத்போதயன் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி. துரோண ஜயத்ரதாதி ரதிகைஹி வியூடம் மஹத் கௌரவம் சைன்யம் த்ருஷ்ட்வா கிருஷ்ணசஹாயவந்தம் அபி பீதம் தம் பார்த்தம் யஹ ப்ரபன்னார்த்யஹ அமோக விஷயம் திவ்யாஸ்திரமுத்போதயன் ரக்ஷிதவான் சஹ ஆர்த்தத்ராணபராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் ப்ரயுக்தஹ ஏகைகோபி ஷப்தஹ மகாபாரதஸ்ய த்ரோணபர்வாந்தர்கதானாம் அபிமன்யுவதபர்வ பிரதிஜ்ஞாபர்வ ஜயத்ரதவதபர்வணாம் கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. பாரதயுத்தே ஸ்வபுத்ரவதஸ்ய பிரதிகிருதிகரணாய ஜயத்ரதம் ஹந்தும் பிரதிஜ்ஞாதேன அர்ஜுனேன பகவதா கிருஷ்ணேன சாகம் கிருதம் சிவாராதனம் சங்கிருண்ஹந்தி. யஹ ப்ரபன்னார்த்திஹா பார்த்தம் அமோக விஷயம் திவ்யாஸ்திரம் உத்போதயன் ரக்ஷிதவான் சஹ ஆர்த்தத்ராணபராயண பகவான் கங்காதர மே கதிஹி இதி. யஹ இதி வாக்யசேஷ. ப்ரபன்னார்த்திஹா ப்ரபன்னயோஹோ ஸ்வப்னே சரணமாகதயோஹோ கிருஷ்ணார்ஜுனயோஹோ ஆர்த்திம் பீடாம் யோஹந்தி சஹ பார்த்தம் அர்ஜுனம் அமோக விஷயம் அமோகாஹ சஃபலாஹ விஷயாஹ யஸ்ய தம் திவ்யாஸ்திரம் திவ்யம் திவ்யசரசிபவம் தச்சததஸ்திரம் ச திவ்யாஸ்திரம் தனுர்பாணத்வந்த்வம் பாசுபதாஸ்திரம் இத்யர்த்தஹ. உத்போதயன் உத்தேஜயன் ரக்ஷிதவான் சங்கிராமே விஜயப்ராப்தி ரூபேண அனுக்ரஹகரணேன அரக்ஷத் சஹ ஆர்த்தத்ராணபராயண பகவான் கங்காதர மே கதிஹி. நனு குதஹ பகவான் அர்ஜுனாய பாசுபதமஸ்திரம் ததாவிதி ஹேதுமாஹு. த்ரோணஜயத்ரதாதி ரதிகைஹி வியூடம் மஹத் கௌரவம் சைன்யம் த்ருஷ்ட்வா பீதம் தம் इति द्रोणजयद्रथादिरथिकैः द्रोणः पद्मव्यूहनिर्माता जयद्रथः पाण्डवेभ्यः तद्वारसंरक्षकः सिन्धुविषयाणां राजा द्रोणश्च जयद्रथश्च द्रोणजयद्रथौ तावादीयेषां रथिकानां रथप्रभूणां ते द्रोणजयद्रथादिरथिकाः तैः भारतयुद्धस्य त्रयोदशेहनि अभिमन्योर्घातकाः षण्महारथाः इत्यर्थः ते च द्रोणाचार्यकृपाचार्यौ दुर्योधनदुःशासनौ कर्णजयद्रथौ च इत्यवगम्यते भारतात् व्यूढं चक्रव्यूहापरनामकेन पद्मव्यूहेन निर्मितं महत् दुःखेन जेतुं शक्यं कौरवं कौरवपक्षीयं सैन्यं चमूं दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्यं ध्वन्यते तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूतपाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः तम् अपिर्विरोधे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मनश्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एवमुक्तः एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद् वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यं शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यं को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जे गीयते विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह पद्मव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र चक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तद सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति। एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास। दुर्योधनादेशेन दुःशासनः तेन सह युद्धं प्रचक्रमे। व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्वारं जयद्रथेन पिनद्धं। तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतस्सः। अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति। क्रमेण दुःशासनेन हतोभिमन्युः भूमौ पपात। तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह। पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवत शिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थ पाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोहन्तासि जयद्रथम् अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज। अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं। ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन् अध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेया। सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह। सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशाते अग्निवर्चसं। ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वारूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने। ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान् नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तम्बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात् प्रीतो वरं भवः इति तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास सङ्ग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः यथा चेदं न जानीयात् सराजा तपसि स्थितः तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति जयद्रथवधप्रकारमाह एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधे धृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरःसिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरःसिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत समन्तपञ्चकात् बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धीतव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत् तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततः सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयं भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शम्भवे ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे नित्यम् नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च వృషధ్వజాయ పింగాయ జటినే బ్రహ్మచారిణే తప్యమానాయ సలిలే బ్రహ్మణ్యాయాజితాయ చ విశ్వాత్మనే విశ్వసృజే విశ్వమావృత్య తిష్ఠతే నమో నమస్తే సేవ్యాయ భూతానాం ప్రభవే సదా బ్రహ్మవక్త్రాయ శర్వాయ శంకరాయ శివాయ చ నమోస్తు వాచస్పతయే ప్రజానాం పతయే నమః నమో విశ్వస్య పతయే మహతాం పతయే నమః నమః సహస్రశిరసే సహస్రభుజమృత్యవే సహస్రనేత్రపాదాయ నమో సంహ్యేయకర్మణే నమో హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యకవచాయ చ భక్తానుకంపినే నిత్యం సిద్ధ్యతాం నవ్వరః ప్రభో.

0: जैसे मक्का है, जैसे गेहूं है, ज्वारी है, वह एक ही पेड़ में हर साल फल नहीं लगते, अंकुरित तो होंगे, वह परिणत तो होंगे, वृक्ष के रूप में जितना बढ़ना था वो बढ़ जाएंगे, उसके बाद फल लगेगा और फल लगने के बाद वह फल पाकांत वह नष्ट हो जाएंगे, वो खुद पेड़ नष्ट, जैसे केला है उत्पन्न होगा और उसमें फल लगेंगे, फल लगने के बाद वो खुद नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे धान का वृक्ष नष्ट होने से पहले वो सारे के सारे संस्कार को धान में छोड़ेगा, वो धान में विद्यमान सारे बीजत्व का संस्कार फिर वह धान में रहेगा, वह जमीन में बोएंगे, फिर वह भी नष्ट हो जाएगा, वो धान्य बीज फिर अंकुर में आएगा, वृक्ष में आएगा, फल में आएगा, फूल में आएगा, फल में आएगा, वह नष्ट हो जाएगा। संस्कार परंपरा अनादि अनंत काल तक इसी तरह जैसे बीज और वृक्ष का परंपरा चलता रहता है, इसी तरह क्षणिक विज्ञानवाद यह कि वो आत्मा पहले क्षण में उत्पन्न हुई आत्मा वह दूसरे क्षण में नष्ट होती है, लेकिन नष्ट होने से पहले दूसरे क्षण में अपने ही संस्कार, अपने ही जाति, अपने ही सादृश्य चैतन्य ज्ञान गुण से युक्त दूसरी आत्मा को पैदा करके पहली आत्मा नष्ट हो जाती है, और दूसरी आत्मा भी अपने नष्ट होने से पहले तीसरी आत्मा अपने ही जाति का, अपने संस्कार से, अपने गुण विशिष्टता को लेकर तीसरे आत्मा को पैदा करके वह दूसरे आत्मा नष्ट हो जाती है। इसी तरह तीसरे, इसी तरह चौथे, इसी तरह पांचवी, एक एक क्षण में संसार के हर वस्तु क्षणस्थायी है, एक ही क्षण में रहते हैं, उसी क्षण में नष्ट हो जाते, प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ, प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ। ये क्षणिक विज्ञानवाद ये बुद्ध दर्शन का ही एक अवांतर भेद है। उस बात को खंडन करने के लिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि यदि अलग अलग आत्मा अलग अलग समय में अलग अलग नई नई आत्मा उत्पन्न होते हैं, यदि तुम मानते हो तब फिर ये प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं होगा। ये प्रतिविज्ञान देखने में आता है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह आत्मा प्रतिक्षण उत्पन्न होकर नाश नहीं होता। ये बात प्रतिविज्ञान को तभी संभव हो सकता है जब एक ही आत्मा का अस्तित्व हो। प्रतिविज्ञान उस ज्ञान विशेष को कहते हैं जैसे उसको आप लोगों के प्रसिद्ध भाषा में स्मरण कह देते हैं, स्मृति, याददाश्त, मेमोरी, आप लोग कहते हो समझना, याद, उसी को वेदांत में प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रतिविज्ञा और याददाश्त में अंतर होता है, कई कई बार याद जो है वह सादृश्य को देखकर स्मरण होता है, पहले कोई वस्तु देखा था, कई देखा था, किसी व्यक्ति को देखा था, कई देखा था, लेकिन बीच में भूल गए, स्वाभाविक ही है। व्यक्ति हर वस्तु को हमेशा स्मरण में नहीं रख सकता है, जब से आप होश में आ गए हैं, समझदार बन गए हैं, तब से लेकर आज तक आप लोगों ने कितने वस्तु को देखा है, कितने वस्तुओं का अनुभव किया है, तो क्या वो सब वस्तु की याददाश्त है अभी आपके पास? नहीं है, वो भूल गए हैं। लेकिन कभी उसी वस्तु के, उसी सादृश्य का वस्तु अचानक सामने आ जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को, ये वस्तु को तो मैंने पहले देखा है। ये पहले कहां देखा, कब देखा, किस तरह देखा, किन प्रसंगों में देखा, इसकी जब आपको स्मरण हो आता है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा उसको कहते हैं। अब ये प्रत्यभिज्ञा यानी स्मृति, स्मृति यानी प्रत्यभिज्ञा, ये तभी संभव होता है जब पहले देखे हुए वस्तु का, अनुभव किए हुए का ही प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि पहले अनुभव नहीं किया होता तो फिर कभी भी प्रतिविज्ञा नहीं होगी, यानी स्मृति नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्मृति हमेशा अनुभव पूर्विका होती है। आप इस वाक्य को समझ गए होंगे, स्मृति यानी याददाश्त अनुभव पूर्वक होता है, पहले आपने अनुभव किया होगा तभी उसका कभी याददाश्त होगा, स्मृति होगी। यदि कभी भी आपने अनुभव नहीं किया है तो उसका स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है, अननुभव का स्मरण नहीं होता, अनुभव का ही स्मरण होता है। तो इससे क्या हुआ, पहले वाला आत्मा ने अनुभव किया और अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव कर रहा था उस समय मर गया। अनुभव करने वाला जिसने अनुभव किया था, अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव किया उसी समय वह अनुभव करते ही मर गया, तो कालांतर में उसकी समझना, उसकी स्मृति, उसकी याद कैसे रहेगी। उदाहरण के रूप में, कल के आप और आज के आप वही हैं कि अलग अलग हैं? कल भी प्रवचन सुनने आए थे, कल जो आए थे आप और आज जो आ रहे हैं आप, ये वही है कि अलग अलग है? बुद्धों का कहना है, क्षणिक विज्ञानवाद का कहना है कि कल का तो मर गया, खत्म हो गया, कल का कल था वो मर गया, फिर आज का कहां से आ गया? बोले वो जो मरने वाला आत्मा है उसने अपने जाति का अपने सादृश्य से दूसरी आत्मा को पैदा करके मर गया। बुद्धों के क्षणिक विज्ञानवाद के हिसाब से तो कल से आज तक आप करोड़ों बार मर चुके हैं और करोड़ों बार आप पैदा हो चुके हैं, क्षणिक विज्ञानवाद। लेकिन ये मृत्यु और उत्पत्ति इतने झड़प से होता है कि आपको बीच में ज्ञात अवकाश की प्रतीति नहीं होती है इतनी जल्दी से। इसलिए वो दो चीज का दृष्टांत देते हैं, एक तो देते हैं दीप शिखा का, क्षणिक विज्ञानवादी लोग, जैसे दिया जल रहा है तो वो जो दिए की लौ है वो जिस समय जल रही थी, आपने अग्नि संयोग किया और संयोग अग्नि के संयोग होते ही वो जला, जलते ही वो बुझ गया। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह बुझने से पहले फिर अपने जैसे दूसरी लौओं को पैदा करके वो बुझ गया, फिर वह बुझ गया, फिर दूसरे को पैदा किया वो बुझ गया, पैदा किया बुझ गया। तो ये सजातीय ज्योति को लौओं को वो पैदा करते हुए पहले के नष्ट होना, दूसरे उत्पन्न होना, पहले नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, पहला नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, वो इतने क्षणिक इतने झड़प से होता है कि आपको भ्रांति होती है कि वह वही का वही है। एक दृष्टांत दीपक का देते हैं, आज का विज्ञान भी ये मानता है, ये जो मरकरी जल रही है, बत्ती जो जल रहा है पावर में, वह इतनी जल्दी जल्दी बुझते हुए और जलते बुझते झड़प से करता है और उसी के चलते मीटर रीडिंग होता है। यदि वह बुझते हुए जलते हुए न करें तो वह रीडिंग ही नहीं हो पाएगा मीटर, उनका कहना। लेकिन वह इतनी तीव्र से होता है, कभी कभी लो वोल्टेज हो तो आपको भान होता है कि लप लप लप लप करता है, तो ऐसा क्यों हुआ? बोले लो वोल्टेज है इसीलिए। वही प्रमाण है कि ये बुझता हुआ जलता है, जलता हुआ बुझ रहा है, बुझना जलना झड़प से होता है। तो कोई किसी वस्तु को जोर से घुमाता है तो भ्रांति ये हो जाती है कि वो एक ही है, पंखा ही समझ लो, इतनी झड़प से है कि उसके पंखे के पंखड़ियां अलग अलग, भ्रांति नहीं होती है, अलग अलग हैं ये भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति होती है कि ये किस चीज घूम रहा है वो, जबकि वो तीन पंखे हैं, दो पंखे हैं, बंदकी अवस्था में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो इतनी तीव्रता से चलते हैं कि वो पंखड़ियां वो ये दो अलग अलग हैं ऐसा भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति है, ये तीव्रता के चलते। ये सृष्टि और उत्पत्ति संहार, सृष्टि और संहार इतनी तीव्र से होती है कि ये नष्ट हो गया, ये पैदा हुआ, ये भान नहीं हो पाता है। अभ्रांति होती है कि वही का वही है। इसको खंडन किया। प्रागप स्वाप समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, ये प्रत्यभिज्ञान से ही सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। नहीं तो जगने वाला व्यक्ति, गहरी निद्रा से जगने वाला व्यक्ति यह कह ही नहीं पाएगा कि मैं आज बहुत गहरी निद्रा में सोया था और वही जो गहरी निद्रा में सोने वाला मैं हूं वही अब इस समय जगा हुआ हूं, और जो मैं इस समय जगा हुआ हूं वही कुछ देर पहले, कुछ देर पहले मैं स्वप्न देखता था, और जो मैं स्वप्न देखता था वही स्वप्न देखने के बाद गहरी निद्रा में गया, और जो गहरी निद्रा में गया वही मैं स्वप्न देखने वाला, और जो मैं स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत का अनुभव करने वाला। प्रत्यभिज्ञा को नहीं मानेंगे, एक आत्मा को नहीं मानेंगे, तो जागने के बाद स्वप्न की स्मृति किसी को भी नहीं होगी। आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ये अनुभव ही यही बता रहा है, श्रुति भी यही बता रहे हैं कि आत्मा एक है, अनुभव ही यही बता रहा है कि स्वप्न देखने वाला जो व्यक्ति है वह मैं वही हूं। और ये प्रत्यभिज्ञा के अनुकूल ही तत्त्वमसि ये श्रुति वाक्य है। जैसे तत्त्वमसि ये वाक्य एक ही आत्मा को प्रतिपादन करती है, आत्मा की एक रूपता का प्रतिपादन करती है ये वाक्य, जैसे लोग में व्यवहार में स्वप्न देखने वाला, रात के स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत देख रहा हूं, तो ये प्रत्यभिज्ञा है, ये स्वप्न की स्मृति जागृत में। इसको क्या कहते हैं, स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का अनुभव हुआ, और उस स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का जो अनुभव हुआ है वो अनुभव करता कौन है, करता कोई और है, और वही स्वप्न के स्वाप्निक पदार्थों का अनुभव करने वाला जो करता है आत्मा है वही जागृत में आया है और अभी जागृत का अनुभव कर रहा है। अनुभूयमान अलग अलग हो सकते हैं, अनुभव करता अलग अलग नहीं हो सकते, अनुभव के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु के बारे में उत्पत्ति नष्ट होना ये माना जा सकता है, ये तो सभी मानते हैं, ये तो वेदांति भी मानता है कि पदार्थ सब उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्थिर होते हैं, नष्ट होते हैं, जगत ही क्षणिक है, जगत ही गतिशील है, नाशवान है, उत्पत्ति नाशवान है, दृष्ट नष्ट, ये वेदांत का वाक्य है। ये जगत का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, लेकिन यह दिखाई पड़ने वाला नष्ट होने वाले जगत के बीच में एक तत्व ऐसा मानना पड़ता है जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, वह है इस अनुभव का एक रूपता करने वाला साक्षी, पूर्व अनुभव का और पश्चात स्मृति का, और जागृत के अनुभवों का संस्कार के माध्यम से स्वप्न में देखने वाला। जो जागृत का अनुभव करता है वही उन संस्कारों को लेकर स्वप्न देखता है। जागृत में घट देखने वाला दूसरा हो और स्वप्न में घट देखने वाला दूसरा हो तो जागृत के घट की स्मृति न होगी, तो फिर स्वप्न में कोई भी व्यक्ति घट देख ही नहीं सकता है। जागृत में देखे हुए घट की स्मृति यदि उसके पास न हो, या जागृत में देखे हुए अनुभव का संस्कार उसके पास न हो, तो वह जागृत अनुभव के संस्कारहीन व्यक्ति कभी भी स्वप्न नहीं देख सकता। स्वप्न टोटल जागृत अवस्था का अनुभव है और वो संस्कार है। इसीलिए कई बार प्रश्न करते हैं कि स्वप्न यदि जागृत का ही अनुभव है तो कई स्वप्न ऐसा आते हैं जो जागृत में खुद अनुभव करना संभव नहीं है, फिर भी स्वप्न दिखाई पड़ता है, वो दृश्य दिखता है, कैसे माना जाए? जागृत का ही संस्कार है, कैसे माना जाए? इसके लिए अनेक उत्तर दिया गया है, अनेक ढंग से समझाया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक छोटा सा ग्रंथ है पंचीकरण, उस पंचीकरण ग्रंथ में सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, वहां सब दिखा दिया, लिखा है, स्पष्ट कर दिया है पंचीकरण वार्तिक के माध्यम से कि कैसे स्वप्न सिद्ध होता है, जागृत के संस्कार कैसे रहते हैं। बड़ा विचित्र ढंग से समझाया, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है जब उस बात का हम स्मरण करते हैं। कई बार हम मनुष्य होते हुए भी आकाश में पक्षी की तरह उड़ते हैं, यह अनुभव होता है स्वप्न में, स्वप्न में हम आकाश में उड़ गए, और जबकि जागृत में कोई मनुष्य आकाश में प्लेन के अलावा ग्लाइडर के अलावा उड़ना संभव नहीं है। कोई ग्लाइडर हो कोई प्लेन हो तभी उड़ेगा वो। जब मनुष्य जीवन में यह अनुभव नहीं हो रहा तो फिर स्वप्न में उड़ते हुए का अनुभव कैसे हो रहा है? नियम के अनुसार तो जागृत में अनुभव होने पर ही स्वप्न में अनुभव होगा, जागृत में अनुभव नहीं होगा तो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। तो उसका उत्तर दिया है, संस्कार केवल एक जन्म के नहीं होते, मनुष्य में जो स्वप्न संस्कार हैं वह केवल मनुष्य जन्म के ही संस्कार नहीं है। संस्कार तो आप जितनी बार जन्म लिए हैं हर बार आपके पास अलग अलग संस्कार सन्निहित हुआ है। आप जब पक्षी बनकर आकाश में उड़ते थे वह संस्कार आपके चित्त में विद्यमान है, क्योंकि पक्षी का स्थूल शरीर आज नहीं है लेकिन पक्षी बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है वही सूक्ष्म शरीर आज मनुष्य बनते समय भी है, और आज मनुष्य बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है वह कालांतर में जन्मांतर में पक्षी बनते समय में भी वही सूक्ष्म शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं, स्थूल शरीर ही बदलता है। हम मरकर यदि पक्षी होना होगा तो उस समय केवल ये मनुष्य स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, यही सूक्ष्म शरीर पक्षी के स्थूल शरीर में जाएगा। और पक्षी के समय में जो सूक्ष्म शरीर है वह पक्षी मरने के बाद यदि मनुष्य बनना होगा तो पक्षी के स्थूल शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर वही मनुष्य के स्थूल शरीर में आएगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार नाश होता है। सूक्ष्म शरीर बार बार पैदा होता नहीं और बार बार नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में नष्ट होता है, ध्यान देना, महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। स्थूल शरीर तो नष्ट होता ही है, साथ ही सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। सारे सृष्टि का जब प्रलय होना होता है तो तब आपका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। उस समय में यहां तक कि कारण शरीर भी नष्ट तो नहीं मानेंगे लेकिन वह कारण शरीर का सद्भाव रहेगा। कहां रहेगा? तो वह ही परमात्मा में ही संस्कार के रूप में रहेगा। इसलिए कारण शरीर अनादि अनंत काल तक एक ही है। केवल ज्ञान से ही कारण शरीर नष्ट होता है, महाप्रलय में भी कारण शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से बना नहीं है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होने पर नष्ट नहीं होगा। स्थूल शरीर प्रारब्ध से बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होते ही स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से नहीं बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होकर स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर फिर किसके द्वारा बना, कब बना? सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के शुद्ध संकल्प से बना, और जब महाप्रलय में परमात्मा उस संकल्प का उपसंहार करता है तो सभी का सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब फिर जीवात्मा कहां रहते हैं? तो बोले कारण शरीर में रहते हैं। जब तक दोबारे सृष्टि नहीं होगी, जब दूसरी बार सृष्टि करना होता है तब ईश्वर अपने संकल्प से सारे सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करता है, तब जाकर वह इस कारण शरीर उस सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होता है, फिर वही प्रारब्ध के द्वारा स्थूल शरीर निर्माण होता है, तब फिर वह तीनों शरीर स्थूल शरीर में व्यक्त होते हैं। इस समय आपके पास तीनों शरीर भान हो रहा है, तीनों शरीर व्यक्त है। इस समय आपके पास तीन तीन शरीर हैं, एक शरीर नहीं है, तीनों शरीर है, तीनों शरीर का आपको भान हो रहा है। लेकिन जिस समय आप स्वप्न देखेंगे उस समय स्थूल शरीर का भान नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भान होता है। और जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का दोनों शरीर का भान नहीं होता, केवल कारण शरीर का भान होता है। और उसी कारण शरीर में आप शरीर ही विद्यमान रहते हो और सुषुप्ति का अनुभव करते हो, और उसी अनुभव को लेकर जब आप जागते हो तब ये कहते हो कि आज मैं बहुत गहरे निद्रा में सोया, कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद आया। ये क्या है? प्रतिभिज्ञा है, इसी को कहते प्रतिभिज्ञा। प्रेमपुरी आश्रम आपने कल देखा था और आज भी देख रहे हो, तो यही प्रेमपुरी आश्रम है, ये कैसे आपको निश्चय होगा? प्रतिविज्ञा। वो प्रतिविज्ञा आपके पास है, कल देखा हुआ ज्ञान अनुभव आपके पास था, तब आप आए तो यही प्रेमपुरी आश्रम है और यही मुझे जाना है। कि आपकी सारी के सारी व्यवस्था वो प्रतिविज्ञा से ही होती है, उसी को आप आपके व्यवहार में स्मृति कहते हो। कल की स्मृति न हुई होती, प्रेमपुरी आश्रम यही है, ये स्मृति आपके पास न रहती तो आप इस गेट से घुसते अंदर है? ये प्रतिविज्ञा देखो, ये प्रतिविज्ञा प्राणी मात्र में रहता है, केवल मनुष्य में रहता है ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र में प्रतिविज्ञा रहती। जैसे कई बार हमने देखा, पहले हम यहां पावलुआ में रहते थे, त्यागमूर्ति गणेशान जी का फ्लैट था पावलुआ में, ऊपर मलबार हिल के, तो आप लोगों को सबको पता है, पुराने लोगों का, तो वहां रहते थे। तब ये कबूतरों को दाना डाला करते थे, तो था वो तीसरे माने पांचवें फ्लैट, माने तीसरे पर था वो फ्लैट। तो हम क्या करते थे कि सुबह थोड़ा दाना, वो ज्वारी और मक्का चना रखा था, कोई भक्त लाके रख दिया था, स्वामी जी रोज डाल दिया करना, तो हमने कहा डाल देंगे, उसमें क्या है। तो सुबह उठते थे डब्बे निकाल के डाल देते थे, और डालने के बाद ठीक टाइम में डालते थे और डब्बा ठक ठक ठक ठक बजा देते थे वो डब्बा, तो कबूतर सब वो आवाज सुनते ही आ जाते थे, खा के चले जाते थे। एक दिन हमने दाना नहीं डाला, ठक ठक कर दिया तो वो सब आ गए, आ तो गए, उसको दाना खाने को ही नहीं मिला, लेकिन दाना था नहीं। थोड़ी देर इधर खोजे चले गए। दूसरे दिन भी हमने वैसे ही किया, उनको ठक ठक किया, आ गए, दाना खोजे मिला नहीं तो उड़ के चले गए। तीसरे दिन भी हमने ऐसे ही किया तो नहीं आए। तब तो दो चार दिन के बाद हमने ऐसे ही किया लगातार एक हफ्ते तक, तो तब तो वो आना ही बंद कर दिया कि ये तो ये फ्रॉड बजा रहा है डब्बा। तो ये कैसे हुआ भाई? प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा ये उसकी स्मृति। तो प्रतिविज्ञा पहले जो ये डब्बा बजाते ही हमको खाना मिलने वाला है करके जो आते थे, एक दिन पहले की जो अनुभव है उसका स्मरण करके दूसरे दिन भी आए, उसी का स्मरण करके तीसरे दिन भी आए, वो प्रतिविज्ञा है। अब प्रतिविज्ञा क्या बनी कि ये डब्बा बजने पर भी खाना नहीं मिलेगा, अब ये प्रतिविज्ञा बनी। तो दाना डालकर डब्बा बजाने पर भी वो नहीं आए, क्योंकि उनकी प्रतिविज्ञा क्या बन चुकी है, नहीं मिलने वाला है। अब वो फिर प्रतिविज्ञा बनानी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा जगत प्रतिविज्ञा पर चलता है। स्वयं देवदत्ता ये जो प्रयोग करते हैं ना, ये वही व्यक्ति है। आप कैसे निश्चय कर रहे हो पिछली बार जून में आया हुआ आत्मानंद वही है, जो प्रतिविज्ञा आपके पास है वही निश्चय कर रहा है। इसलिए हम भी निश्चय कर रहे हैं कि पिछले बार आए गिरीश भाई वही है, हमारे पास वो प्रतिविज्ञा है, आपके पास वो प्रतिविज्ञा है। उस प्रतिविज्ञा से आप भी ये निश्चय करते हैं कि ये वही स्वामी जी हैं, और हम भी यही निश्चय करते हैं कि वही गिरीश भाई है। ये प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा जिसको अनुभव हुआ है उसी को होगा, अनुभव जिसको नहीं हुआ है उसको प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। तो अनुभव करता और प्रतिविज्ञा से सिद्ध होता है कि एक ही आत्मा जिसने अनुभव किया वही आत्मा प्रतिविज्ञा करता है। तो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला व्यक्ति वो प्रतिविज्ञा जागृत में, और क्योंकि उसको सुषुप्ति में अनुभव हुआ आनंद आया वो प्रतिविज्ञा है, इसलिए जागृत में चाहे जैसा भी आनंद का प्रसंग आवे उससे ज्यादा उसको सुषुप्ति में आने के कारण कहता है कि अब तो सोने दो, जलो बंद करो टीवी, बंद करो एक गप सप, क्योंकि उसको वहां विश्रांति है, वो प्रतिविज्ञा काम कर रही है। एक ही व्यक्ति माने बिना ये प्रतिविज्ञा की संगति नहीं होती। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये या प्रत्यविज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। मैं वही पहले सोने वाला, वही मैं अब जगने वाला, और जो ये मैं जगने वाला वही मैं सोने वाला, सोने वाला जगने वाले के बीच में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रतिविज्ञा है, इसलिए आत्मा एक ही है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Munayaduvar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम मुनयडुवार है। चोल प्रदेश में एक स्थान है तिरुनीडूर। यहाँ की धरती शस्य श्यामल है और अमृत सदृश स्वाद अन्न उत्पन्न करती है। इसी स्थल के एक कृषक परिवार में मुनयडुवार का जन्म हुआ। यह इनका वास्तविक नाम नहीं, पर इनमें इसी नाम का नाम से स्मरण किया जाता है। इसका अर्थ है मोर्चे पर लड़ने वाला। उन दिनों सामंती राज्यों के बीच में प्रायः छोटे बड़े युद्ध चलते ही रहते थे। ऐसे में पराजित राजा स्वतंत्र सरदारों की सेना की मदद लेते थे। धन के लिए युद्ध करने वाले अपनी सहायता के लिए निश्चित मूल्य लेते थे। मुनयडुवार के पास वीर योद्धाओं की एक छोटी सेना थी, जिसे वे सहायता मांगने वाले सामंत राजाओं की सेवा में लगाते थे। वे स्वयं सेना का नेतृत्व करते थे और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते थे। ऐसी स्वतंत्र सेनाएं अधिक धन देने वाले सामंत की ओर से युद्ध करती थी। ये पेशेवर लड़ाकू धन के लिए अपनी वीरता का उपयोग करते थे। हमारे कथानायक भी इसी प्रकार के व्यवसाय द्वारा भारी मात्रा में धन अर्जित करते थे। इनकी सहायता का आधार देश अथवा प्रदेश के प्रति निष्ठा न होकर केवल धन होता था। इनकी विशेषता यह थी कि इस प्रकार से अर्जित संपूर्ण धन संपदा का प्रयोग मुनयडुवार साधुजनों और शिव भक्तों की सेवा में लगाते थे। त्रिनेत्रधारी प्रभु नीलकंठ शिव के भक्त को दान दक्षिणा देना, उन्हें पवित्र भोजन खिलाना, फल फूल दूध दही मिष्ठान आदि द्वारा उनकी सेवा करने में अपनी सारी अर्जित राशि नियमित रूप से व्यय करते थे। इसीलिए इनको शिव भक्तों में एक उत्कृष्ट स्थान मिला है। इसीलिए वे उत्तम कोटि के नायनमार या संत माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वीरता का प्रयोग करके धन राशि कमाया और उस धन का प्रयोग शिव भक्तों और शिव के मंदिरों में को ठीक करने में लगाया। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by महा मंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: जिसमें भगवती शक्ति का ही सारा सौंदर्यता, सारा भाव भरा हुआ है और शक्ति को इस तरह प्रतिष्ठित किया है शंकराचार्य जी ने। मान लो कि शक्ति की उपासना के बिना किसी की अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, यहां तक कि किसी भी क्षेत्र में गति नहीं हो सकती है। जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के प्रति इतना भाव बढ़ जाता है, इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास बढ़ जाता है। पहले मंगलाचरण श्लोक में ही उनकी प्रतिज्ञा है, सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवो देवम नखलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वाम आराध्यम हरि हर बिरंच्यादि मिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कतमकृत पुण्य प्रभवति। यहां तक कहा है कि हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, शिवः जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वह चैतन्य स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान स्वरूप है इसमें कोई संदेह नहीं, आनंद स्वरूप है इसमें कोई संदेह नहीं, अद्वैत स्वरूप है इसमें भी कोई संदेह नहीं। शिव का मूल स्वरूप क्या है? सत चित आनंद अद्वैत। इसलिए उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। मुंडक उपनिषद में परमात्मा के लिए कहा शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। देख लो सारे प्रपंचों का जहां जाकर उपशम हो जाता है, बाद हो जाता है, जितने भी प्रपंच हैं सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जहां जाकर उपशम अर्थात बाद हो जाता है, उस बाधाधिष्ठान शिव कैसे हैं? शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसे हैं वो। लेकिन ऐसे होने पर भी उस आनंद का अनुभूति तो हे देवी हे जगदम्बा आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। लो भगवान शिव आनंद रूप हैं, लेकिन उनके जो स्वरूप का जो आनंद स्वरूपता है वह आनंद तो तभी छलकता है जब आपका सान्निध्य होता है, समुद्र शांत होता है। लेकिन समुद्र में तरंग तो तब आता है जब उसमें वायु का झोंका पड़ता है, थोड़ा सा वायु का आघात पड़े तो वो शांत पानी में तरंग निकलने लग जाते हैं। अब थाली में पानी भर के रखो, उसको छो नहीं, पानी स्थिर रहेगा, लेकिन जरा सा फूंक मारो है? जरा सा स्पर्श कर दो, फूंक मारते ही स्पर्श करते ही उस पानी में तरंग निकलते हैं। इसी तरह उस शिव के जो परम आनंद रूपता है वो आनंद रूप तब तरंगायित तो होता है जब शक्ति से युक्त होता है। इसी प्रकार से वो उसका जो ज्ञान स्वरूप है, उनके उस ज्ञान स्वरूप में तरंग तब आएगा जब आपका सान्निध्य प्राप्त होगा। किसके? देवी के। इसलिए शिव शक्तिया युक्त हो यदि भवती सक्त प्रभवित हो, प्रभवित सक्त किस काम को करने में समर्थ होगा वह शिव? कब? बोले जब शक्ति से युक्त होगा, जब आपसे युक्त होंगे तभी वो कुछ करने में समर्थ होगा, अन्यथा वो अस्तित्व रहेगा कर नहीं पाएगा। विद्युत तरंग का अस्तित्व है, विद्युत तरंग का अस्तित्व तो है, लेकिन वह विद्युत तरंग किसी भी तार में केबल में प्रवाहित हुए बिना वह पावर वह विद्युत कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वह तार भी केवल एक ही तार में प्रवाहित होकर कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए साइंस वैज्ञानिकों ने दो तार का प्रयोग किया। उन्होंने देखा दो तार का प्रयोग किया, एक ठंडा तार है और गर्म तार। गर्म तार में बिजली की उपस्थिति होने पर भी एक तार में उपस्थित हुआ वो बिजली कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ एक ठंडा तार का कनेक्शन जोड़ देते हैं तो बिजली सब काम करती है। गर्म करना हो तो गर्म, ठंडा करना हो तो ठंडा, प्रकाश करना हो तो प्रकाश, जो काम का वो सब कर देगा। इसीलिए गर्म तार स्थानीय भगवान शिव, ठंडा तार स्थानीय भगवती जगत जननी जगदम्बा, दोनों का पैरेलल पर जब गमन होता है और कहीं जाकर दोनों का कनेक्शन होता है, संयोग होता है, तब वह क्रिएटिव होता है, तब वह काम करने में समर्थ होता है। कौन? पावर। इसी तरह शिव शक्त्या युक्त हो यदि भवति शक्त प्रभवित हूं नचे देवो देवम कुशलम स्पंदितुम अपि। यदि शिव भी माने सत्ता भी, सत्ता और शक्ति ये दो अलग अलग चीजें हो अस्तित्व में, सत्ता अलग अस्तित्व है, शक्ति का अलग अस्तित्व है, लेकिन सत्ता और शक्ति का जो समन्वय है वही कार्य करने में सक्षमता को पैदा करता है। नचे देवम देवो कुशल स्पंदितुमपि, यदि शक्ति से युक्त नहीं हुए शिव तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। होंगे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। शक्ति से युक्त न हो तो शिव नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि सत्ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। व्यक्ति होना अलग चीज है। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो घर में है तो सही, लेकिन क्या घर में रसोई बना पाएगा वो बूढ़ा व्यक्ति? उसका अस्तित्व तो घर में विद्यमान है, लेकिन उससे कहो कि रसोई बनाओ तो वो तो निष्क्रिय है। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। वो कहेगा मैं हूं तो सही, लेकिन मेरे में करने की क्षमता नहीं है, कहेगा कि नहीं बूढ़ा व्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो तुम मर गया? बोले मरा तो नहीं हो, जिंदा हो। जिंदा है तो क्यों नहीं करता? बोले अब करने की क्षमता नहीं है। ये देख लो, यही तो शिव शक्ति है। शिव अस्तित्व में तो रहेंगे, लेकिन वो अस्तित्व क्रियाशील तब होगा जब शक्ति से युक्त होगा। यही कारण है कि सृष्टि के आरंभ से ही अतस्त्वाम आराध्य हरि हर विरिंच्यादि वीरपि। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसीलिए शिव भी आपकी आराधना करते हैं, विष्णु भी आपकी ही आराधना करते हैं, ब्रह्मा भी अपने की ही आराधना करते हैं, इंद्र भी आपकी आराधना करते हैं, सभी ने आपकी आराधना की है, तो फिर हम भी आपकी आराधना किए बिना कैसे रह पाएंगे? ये देखो, शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी इस तरह आरंभ किया 100 श्लोकों का। इसी तरह शिव की उपासना, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है देख लो। शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध शिव का स्वरूप तो पूरे वेदांत दर्शन में प्रतिपाद्य है। ध्यान देना आप लोग, शुद्ध शिव का स्वरूप तो सारे वेदांत दर्शन में प्रतिपादित है। उपनिषद ने वर्णन किया है, ब्रह्मसूत्र ने वर्णन किया है, गीता ने वर्णन किया है, दर्शन शास्त्र ने उस शब्द शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन शक्ति से युक्त हुए हुए शिव का स्वरूप कैसा है? उस स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए शिव भक्ति से वो तत्प्रोत शंकराचार्य जी ने 100 श्लोकों का शिवानंद लहरी की रचना की। शिवानंद लहरी। अब यही कारण है कि देखो, हमारे भारत भूमि में अनेक आचार्य हुए हैं। बहुत से आचार्य एक देव उपासनावाद से ग्रसित हैं। एक देव उपासना बहुतों की मान्यता है। वैष्णव खाली विष्णु को ही देवता मानेंगे और कहेंगे कि नहीं, विष्णु की ही उपासना करो। कोई कृष्ण को देवता परमात्मा मानेंगे और कहेंगे कि केवल परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा को छोड़कर और कृष्ण को छोड़कर और किसी का आश्रय में मत जाओ। कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने, यहां तक कह दिया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ऐसे समन्वयात्मक आचार्य हुए उपासना क्षेत्र में। उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए भी पूरा का पूरा भाव विभोर होकर अपने सारे हृदय को खोल दिया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ऐसे स्तोत्रों की रचना की है, अद्भुत है। विष्णु की उपासना के लिए, विष्णु भक्ति के लिए भी ऐसी ऐसी रचना है। कहां अद्वैत वेदांत के परम आचार्य भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, अविनय विपनय अपनय विष्णु हो, हे विष्णु आप महान हैं, मैं क्षुद्र हूं। क्षुद्र होने के कारण ही हो सकता है कि मुझमें बहुत गलती हो। अभिनय, मेरे जीवन की जो उद्दंडता है, अभिनयता है, मेरे मन के चलते ये समस्या आई है। अभिनय, अपनय, मेरे जीवन की जो अविनयता है, ये दुर्गुण है, और इसी अविनयता, यही दुर्गुण के चलते मेरे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे पहले महाराज, मेरी इस अविनयता को आप हटा दो। दमय, समय, मन, मेरी मन को आप कंट्रोल कर दो, रोक दो। मेरा मन बड़ा चंचल है और बहुत उच्छृंखल है। दमय मन समय विषय मृग तृष्णा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये विषय केवल मृग तृष्णा है, लेकिन मेरा कहा माने तब न कौन। आप भी समझाते हो अपने बच्चे को कि बेटा ये गलत काम है, आपका समझाना माने तब न, मानता नहीं है। मृग को हजार समझाओ कि अरे हिरण, हे मृग, मरुभूमि में पानी तीन काल में नहीं हो सकता है, लेकिन आपका कहा वो माने तब न। वो प्यास से छटपटा रहा है और दौड़ रहा है मरुभूमि की तरह। मृग कहता है कि तुम्हारे कहना मैं कैसे मानू कि वहां पानी नहीं है, दिख रहा है मुझे इतना बड़ा सरोवर। देख लो, तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, महात्मा हजार कहें कि आनंद भी अंदर है, महात्मा हजार बार कहे, हजारों महात्मा आकर कहे आनंद अंदर है, समझाएं, तभी तुम्हारे मन और इंद्रियां मानती है, है? मानती है। सुबह हुआ कि आमरस के कटोरी के तरफ मन दौड़ता है, आमरस नहीं बना है ले जी। विषय मृग तृष्णा, वेदांतियों ने बार बार विषयों को तो केवल मृग तृष्णा कहा है। मृग की तृष्णा यानी मरुजल, ये विषय मृग तृष्णा, ये मरुजल, न कभी इन मरुजल के पानी से किसी का प्यास मिटा है, न किसी मरुजल के देखने वाले दिखाई पड़ने वाले मरुजल से किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ है, केवल मृग तृष्णा है। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आपका न इंद्रिय मानता है न मन मानता है। आज एक सज्जन आकर कहने लगे हमसे, महाराज खूब बारिश हुई है, आज तो पकौड़ा खाने का दिन है। बोलो, पकौड़ा भी किसका पता है, उन्होंने तो बोल दिया हमारे से, कांधे के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, वाह क्या कहना। देखो आज तो पकौड़े खाने का दिन है, प्याज के पकौड़े खाने का दिन है, देखो क्या बारिश हुई है। ले जी, विषय मृग तृष्णा मान रहा है, तुम्हारी इंद्रियां मान रही हैं, मान रहा है तुम्हारा मन। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन भी नहीं मानता, कह तो मैं रहा हूं, समझा तो मैं रहा हूं, लेकिन नहीं मानता। और हमने कई बार सुना है महापुरुषों से और शास्त्र में कई बार पढ़ा है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए शायद आप चाहो तो वह दमय है, समय मन दमय विषय मृग तृष्णा और भूत दयाम विस्तार आया। हे भगवान, संसार के सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव विस्तार हो, सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव विस्तार हो। तारय संसार सागरत, जब तक जिए तब तक हृदय का भाव ऐसा हो कि सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जावे तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएं, और इन इंद्रिय और अंतकरण के वश में होने की जो पराधीनता है, इन पराधीनताओं से हम मुक्त हो जाएं। तारय संसार सागरतः, आपकी कृपा हुए बिना हम संसार सागर से नहीं तर पाएंगे। क्या विष्णु भक्ति का भाव, छह श्लोक। आज वैष्णव लोग भी, घर घर में कट्टर वैष्णव भी शंकराचार्य जी की इस रचना का नित्य पाठ करते हैं। क्या समन्वय है। शंकराचार्य जी ने यह नहीं कहा कि हम अद्वैत वेदांती हैं तो क्या सगुण ब्रह्म की, सगुण परमात्मा की उपासना करें, हमको क्या जरूरत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमारी स्थिति है, हम सगुण साकार में क्यों जाएं? नहीं। इसी तरह शक्ति उपासना, विष्णु गण कृष्ण शिव, देख लो क्या समन्वय कर दिया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा समन्वय कर गए, ऐसा समन्वयात्मक आचार्य दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा नहीं हुआ है। विष्णु को भी भगवान ही माना है शंकराचार्य ने, शिव को भी भगवान ही माना है, कृष्ण को भी भगवान ही माना है, देवी को भी भगवती ही माना है। वैष्णव लोग व्याख्या करते हो, कोई हो तो नाराज नहीं हो जाना। भगवान शिव को भगवान नहीं मानते। हाँ, भगवान शिव को क्या मानते हैं पता है? भगवान विष्णु के परम भक्त है। देख लो, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है शिव। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान शिव के अनंत अनन्य भक्त है, ऐसा नहीं कहा। साक्षात परमात्मा है बस। देखो क्या उदारता है उनके चिंतन में, उनके विचारों में कहीं संकीर्णता नहीं दिखता है, दुराग्रता नहीं दिखती है, पूर्वाग्रता नहीं दिखती है। क्या समन्वय है। तो ऐसे जो आचार्य हैं उनकी ये रचना शिवानंद लहरी, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम जब काठमांडू नेपाल से आए तो हमारे चिमन भाई प्रेमपुरी आश्रम के कार्यकर्ता सक्रिय, उन्होंने फोन किया कि महाराज आप एक महीना के लिए हर साल आते हो तो इस साल जो है शाम के विशेष कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, विशेष प्रवचन आपका हम रखना चाहते। हमने कहा रख लो भाई। तो किस विषय पर आप बोलेंगे? तो हम तो निर्विषय पर बोलने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विषय है, कोई विषय है क्या? तो फिर भी कुछ न कुछ तो एक आधार तो रखना ही पड़ता है। तो हमने कहा तुम जो कहोगे वो हम उस पर बोलेंगे। तो हमारे शिष्य मोहनीश ने कई टॉपिक्स सुझाया था, उसमें शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्रों का लिस्ट उनको दिया होगा, ये चीज है, इन पर यहां खास विचार नहीं हुआ है प्रेमपुरी आश्रम में। तो इनमें से आप जिस स्तोत्र को या जिसको आधार चाहें उस पर विचार करें। तो हमने कहा शिव भक्ति से भरा हुआ एक ग्रंथ है आदिगुरु शंकराचार्य जी का, उस लिस्ट में शिवानंद लहरी ये नाम भी आया हुआ था। हमने कहा इसी पर प्रवचन करेंगे, चलो। तो वही यहां लिख दिया हमारे चिमन भाई ने, और उस पर आज हम विचार करने के लिए बैठे हैं। शिवानंद लहरी नाम भी बड़ा आनंद है। तीन चीज इस वाक्य में है, एक है शिव, दूसरा है आनंद, और तीसरा है लहर, लहरी। आनंद जब शिव से छलकने लगता है तो लहर हो जाती है। है। जो आनंद शिव में सीमित रहता है वह जीव का अनुभव गम्य नहीं होता। जीव का हम बात ये कह रहे हैं, हम लोग भ्रांति न हो आप लोगों को, वैष्णव के सामने एक बड़ी भारी समस्या है। शिव में आनंद है लेकिन जीव अलग ही रहेगा तभी शिव के आनंद का अनुभव कर पाएगा। शिव जीव की एकता हुई तो शिव के आनंद का जीव कैसे अनुभव, जीव ही नहीं रहा। ये बड़ी भारी समस्या है वैष्णवों को, इसलिए उनको द्वैतवाद कहते हैं। समझे कि नहीं? यदि आप लोग वैष्णव हो तो भी सिद्धांत तो अपना सिद्धांत तो आप लोग समझते ही होंगे। वैष्णवों को द्वैतवाद कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। यदि शिव और जीव की एकता मान लो, दोनों जीव शिव ही हो गया, तो फिर शिव में रहने वाला जो आनंद है वो आनंद का अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने वाला जीव तो खत्म हो गया, तब तो शिवानंद का अनुभव गम्य नहीं रहेगा। शिव मेरा जो आनंद, इसलिए जीव शिव से भिन्न ही रहना चाहिए ताकि बड़ा आनंद का अनुभव करे। तो हम इसका उत्तर दिया करते हैं, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को परमात्मा से भिन्न ही रहना पड़ेगा।

बने तब जाकर अपने में विद्यमान आनंद का तो अनुभव कर पाएगा। लेकिन जब तक जीव नहीं बनेगा अपने में रहने वाले आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाए क्या? है? परमात्मा जीव क्यों बना बोलो? परमात्मा जीव क्यों बना? वैष्णवों के हिसाब से द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो ये परिभाषा करनी पड़ेगी कि अपने में विद्यमान जो आनंद है उस आनंद का उपभोग अनुभव करने के लिए वह जीव बना, ये कहना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं, हम माने अद्वैत वेदांत ये कहता है, जीव शिव की एकता क्यों चाहते हो तुम? तो हमारा कहना यह है कि जीव जब तक शिव रूप नहीं होगा शिव में विद्यमान आनंद का अनुभव नहीं करेगा। अब वो लोग कहते हैं अनुभव करने के लिए अलग होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो अलग नहीं होगा उसको अनुभव नहीं होगा अपने के आनंद का। इसका मतलब भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपने भी जो आनंद है उसका उनको अनुभव नहीं है, क्या ये माना जाए? हाँ, अद्वैत में और ज्यादा आनंद का अनुभव होता है जाने दो, इस पर हमारा दुराग्रह नहीं है। लेकिन वैष्णवों की परिभाषा के अनुसार शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं जब शिव में जो आनंद है, परमात्मा में जो आनंद है, यहां शिव शब्द का अर्थ तो परमात्मा ही ले लेना बाबा, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद को जब शक्ति से संपर्क होगा, शक्ति से युक्त होगा वो शिव, आप वेदांत की भाषा में कहो ब्रह्म में जो आनंद है वह जब माया से युक्त होकर माया में प्रतिबिंबित होगा तब वह सर्व अनुभव गम्य होगा, वह हृदय अनुभव गम्य होगा। हाँ, वो हृदय गम्य होगा, अन्यथा हृदय का बाध करना पड़ेगा तब जाकर। अब हृदय का जब बाध करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो स्वरूप का आनंदों का अनुभव होगा, हृदय से आनंद का अनुभव जो होगा वह लहर होंगे, तरंग होंगे, तो वो तरंग ही है वो आनंद का छलक जा रहा, आनंद छलक रहा है, तो उसको, उस भाव को व्यक्त करने वाला ये स्तोत्र ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिवानंद लहरी। शिवानंद लहरी के पहले के कुछ श्लोकों को शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में रचना की है। अब आप लोगों को छंद कितना बोध है, शिखरणी छंद महिमनी स्तोत्र तो आप गाते हो ना, वो शिखरणी छंद में। दुर्गा क्षमापन स्तोत्र आप लोग गाते हो कि नहीं? न मंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, शिखरणी छंद में। महिमना पारंते परम विदुषो यद्यस दृशी, शिखरणी छंद। इसी तरह पहले के कुछ श्लोके हैं शिवानंद लहरी के, शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में गाया है, लिखा है। 100 श्लोक हैं शिवानंद लहरी में। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह नियम रहा है कि परमात्मा भी आनंद रूप है, मंगल रूप है, और आदि गुरु शंकराचार्य खुद शिवजी के अवतार होने के कारण वो भी मंगल रूप है। न शिव में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, न शंकराचार्य जी में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, और शिव की जो भक्ति है, स्तोत्र की रचना है, वो खुद ही मंगलमय है, अमंगल की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। फिर भी शंकराचार्य जी ने पहला श्लोक मंगलात्मक, पहले श्लोक से मंगलाचरण की है। हमारे वैदिक परंपरा में ये रहा है कि हम कुछ भी करें मंगलाचरण करके करें। मंगलादीनी, मंगल मध्यानी, मंगलांतानी, कम से कम 3 बार मंगलाचरण करो। पहले मंगल करके कार्य आरंभ करो, फिर बीच में विश्रांति के समय में कार्य विश्रांति में मंगलाचरण करो, और कार्य के पूर्णता समाप्ति में भी मंगलाचरण करो, क्योंकि श्रेयांसी बहु भी

0: विघ्नानि, श्रेय मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे। वो सारे विघ्न ना आवे इसके लिए मंगलाचरण करो। मंगलाचरण करने का दो प्रयोजन है, एक तो विघ्नों को रोकना, विघ्नों के प्रवेश से रोकना, दूसरा प्रयोजन है कि मंगलाचरण करके कार्य आरंभ करोगे तो कार्य सफलता में कार्यकर्ता को अहंकार नहीं होगा। क्या समझे? दो प्रयोजन से मंगलाचरण करना है। मंगल परमात्मा है, उनका स्मरण करते हुए कार्य आरंभ करना ही मंगलाचरण है। और मंगलाचरण का यह है कि हे भगवान, मैं जो काम पूरा करने, जो काम आरंभ करने जा रहा हूं, मैं अल्पज्ञानी अल्पशक्तिमान होने के कारण ये पूरा होवे चाहे ना होवे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण ये आरंभ किया हुआ कर्म आपके कृपा से तो निर्विघ्न पूर्ण हो सकते हैं, यदि आपकी कृपा न हो तो मुझे भरोसा नहीं कि ये निर्विघ्न पूरा हो। एक तो विघ्न बहुत हैं, दूसरा मैं अल्पशक्ति वाला हूं, अल्पज्ञ हूं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम .org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तो मनुष्य जब अपने सर को भगवान के चरण में झुकाता है तो अभिमान भी भगवान शंकर उसको अपने चूड़ा में लपेटकर आभूषण बना लेते हैं। अभिमान में खाली स्व जोड़ना है, स्वाभिमान बन जाता है। स्व का अर्थ है स्वरूप विषयक जो अभिमान, अहम ब्रह्मास्मि, तो वह भी भगवान के चरणों का आश्रय लेने से शोभा बन जाता है। इसके बाद जो है भगवान हाथ में कंगन धारण करते हैं, कंगन की जगह जो है सांप है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बड़ा लोभ है। प्रजापति ब्रह्मा के पास दानव मानव और दैत्य तीनों गए उपदेश के लिए, एक साथ पहुंचे तो उपदेश में भेद कर नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परोक्ष उपदेश दिया, द द द तीनों कहा। जब जो है दैत्यों को द कहा तो पूछा कि क्या तुमने हमारे अभिप्राय को समझा। दैत्यों ने कहा कि दयध्वम, हम लोग बहुत हिंसा करते हैं। इस द का तात्पर्य कि दया करो। मनुष्यों से पूछा कि द का अर्थ क्या है, मनुष्यों ने कहा कि दान। देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा कि हम लोग विषय लंपट हैं, इसीलिए आपने कहा दमन, इंद्रियों को बस में करो। तो मनुष्यों को दान, द का अर्थ दान लिया। तो मनुष्य के जीवन में इतना लोभ होता है, यदि उसको पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए फिर भी संतोष नहीं होता है, स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है। वह भी मिल जाए तो आगे ब्रह्म लोक तक जाता है। वह भी मिल जाए तो फिर भगवान शंकर से कहता है दो दो हाथ हो जाए। रावण के जीवन में देखा ना अपने, रावण भस्मासुर बहुत सारे हुए। भगवान शंकर से वरदान पाया, उन्हीं के पास पहुंच गए। ऐसे कई हैं, रावण है, बाणासुर है, भस्मासुर है, तो वहां पहुंच गए कि बस दो दो हाथ हो जाए। दुनिया में कोई रहा नहीं लड़ने वाला, ये मनुष्य कोई संतोष नहीं होता है, ये लोभ ऐसी वृत्ति है। ये लोभ वृत्ति यदि आप भगवान के चरणों में अपने द्रव्य का, शरीर का, मन का, वाणी का यदि आप दान देते हैं तो यही जो है मोक्ष कारक हो जाते हैं। जैसे कि गंगा जी में बरसात के गंदले नाले जब पहुंचते हैं तो नाले नाले नहीं रहते बल्कि साक्षात गंगा हो जाते हैं। जब तक गंगा से उस नाले का संयोग नहीं होता है, संपर्क नहीं होता है, तब तक लोग नफरत करते हैं। भूल से ही पैर पड़ जाए तो आप धोते हैं, नहाते हैं। वही गंदला नाला गंगा इससे संबंधित हो गया, मिल गया तो उसको गंगा कहते हैं, संकोच नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये जो बंधन कारक जो हमारा संशय है, अभिमान है या लोभ है, ये वृत्तियां जब भगवान से संबंधित हो जाती हैं तो फिर ये पवित्र हो जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं, दूषण ही आभूषण बन जाता है। एक बार की घटना है, एक भक्त बहुत ही कंजूस थे। उनके पड़ोसी कहा करते थे कि भाई कम से कम तो सोमवार का दिन है, एकादशी का दिन है, मंदिर जाया करो, कुछ नहीं तो कुछ वहां भगवान को फूल पत्ती चढ़ाया करो। वो बोले कि हमें मंदिर मुनि जाना नहीं है, अभी मैं जवान हूं, बूढ़ा होने के बाद जाऊंगा। पर हर दिन पड़ोसी कहते, बेचारा परेशान हो गया। सुनते सुनते बोला कि कब तक सुनूं, चलो आज सोमवार का दिन है, पास जैसे बाबुलनाथ महादेव ऐसे कोई मंदिर था, पहुंच गया। सोमवार के दिन शिव मंदिर में लंबी कतारें लगती है, लंबी कतार लगी थी, खड़ा हो गया। जैसे नंबर आया, एक अपने हाथ में सोने की मुहर रखा था ताकि लोगों को कहूंगा कि आज हमने एक मुहर दान दिया है। अब बेचारा जब पहुंचा, सोचा जरा देख तो लूं, जब खोला तो पसीना पसीना, कहा कि देख मैं भी रो रहा, तू भी रो रहा, पॉकेट में रख लिया, वापस आ गया। साथियों ने पूछा क्या तुमने सोने की मुहर चढ़ा दी, मतलब बस बात बंद कर दो, बेचारा रो रहा तो कहे चढ़ाता, हमारे पास इतना दिन तिजोरी में रहा, इतने सुविधा में एसी कमरे में, अब मंदिर में तो एसी नहीं है, तो बेचारा रो रहा था कि मुझे कहां तुम डाल रहे हो, इसलिए हमने उसको वापस लाया। देखो मनुष्य इतना समझदार है। तो ये लोभ वृत्ति ऐसी है, हालांकि सबको पता है कि हमारे साथ हमारा शरीर भी नहीं जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। और शास्त्रों में जहां पर भी दान की चर्चा आती है वहां दान जवाब करते हैं, इसमें आपका कल्याण, जिसको दान देते हैं उसका तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसे तो प्रतिग्रह का दोष लगता है। और प्रतिग्रह दोष को दूर करने के लिए बड़ा भजन करना पड़ता है, उपासना करना पड़ता है। आप तो कुछ भी द्रव्य दान दे दिए मंदिर में, अब मंदिर में जाने के बाद बड़ा भारी दायित्व तो उस मठाधीश पर आ जाता है। यदि उसका हम सत्कार में विनियोग किए तो ठीक है, अन्यथा जो है बड़ा ही दुर्गति होती है। एक पौराणिक कथा है इसी प्रसंग में। एक बार इंद्र पृथ्वी लोक में ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। वैसे देवता लोग आते हैं यहां की भी, मतलब की खबर लेने के लिए कि संसार में कैसी व्यवस्था चल रही है। इंद्र घूमते घूमते बहुत दूर जंगल में पहुंचे। जंगल में क्या देखते हैं कि एक चांडाल कौवे के मांस को पका करके और शराब डालकर जूते से ढक देता है। इंद्र देख रहे थे। इंद्र को बड़ी हैरानी हुई कि कौवे का मांस शराब डाल दिया, जूते से ढक दिया, इससे बड़ा पवित्र क्या हो सकता, किससे बचाने के लिए ये जूता से ढका। उन्होंने पूछा, काकमांसम सुरासिक्तम हिपानदभ्याम चछादित इंद्र पृच्छति चांडालम किम अमेध्यमतः परम। इंद्र ने पूछा, अये चांडाल किम अमेध्यम अतः परम, इससे बड़ा अपवित्र क्या चीज है जिससे बचने के लिए तो इसको जूता से ढक रहा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया चांडाल ने। उसने कहा कि गो द्विज गवाम वृत्तिम हरंती महारयंती च तेषां पादो रज भीत्या ह्युपानद्भ्याम चछादितम मया। चांडाल ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण देवता, मैं तो इतना धर्म कर्म की मानसा कर नहीं सकता, जानता नहीं हूं, पर हमने महापुरुषों से श्रवण किया है, गो द्विज गवाम वृत्तिम, देव द्विज गवाम, देवताओं के, द्विजों के और गौओं के, वृत्ति मतलब आजीविका को, जो हरण करते हैं या हरण करने में सहयोग करते हैं, हरंती हारयंती च, उनके पाद रज के भय से हमने इसको ढका है। मतलब इससे भी अपवित्र है, जो लोग ऋषियों का जो विधान है कि दशांश धन का विनियोग देवाचन में करे, ऋषियों की सेवा में खर्च करे, तो उनके पाद रज के भय से मैं इसको ढक रखा हूं। तो नारायण, हम लोग जो है ये लोभ वृत्ति से बहुत कुछ जो है अनर्थ कर डालते हैं, इसी बात के यहां पर फड़िना से कहा। यदि आप जीवन में भगवान शंकर को अपनाते हैं तो चाहे संशय वृत्ति हो या लोभ वृत्ति हो या अभिमान वृत्ति हो, अभिमान वृत्ति है तो समझो कि ये भगवान शंकर के सिर का भूषण बन जाता है, और संशय वृत्ति है तो ये समझो श्रवण करने से, शास्त्रों का श्रवण करने से ये कान का भूषण बनता है। स्वाध्याय कितनी महिमा है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय और प्रवचन के श्रवण करने से इष्ट देवता का संप्रयोग मतलब कि सानिध्य उपलब्ध होता है, परंतु अहरहर होना चाहिए। जिस वहां पर वाचस्पति मिश्र ने उसके व्याख्यान में लिखा है तत्वशारदी टीका में कि जिस प्रकार से हम भोजन हर दिन करते हैं, भी भोजन बिना कि आदमी रह नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान से पहलवान हो वह भी जो है भोजन जरूर करता है, इसी प्रकार से अपने जीवन में भोजन के तरह से स्वाध्याय को अंग बना ले। जैसे भोजन से हमारा स्थूल शरीर पुष्ट होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भोजन है स्वाध्याय। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो कि प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है, तो इसका आहार है स्वाध्याय प्रवचन। जैसे भूखा व्यक्ति कुछ भी जो है अनाप शनाप खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है, ऐसे यदि हम इस सूक्ष्म शरीर का खुराक जो स्वाध्याय प्रवचन है उसको नहीं करेंगे तो निश्चित ये सूक्ष्म शरीर यदि उत्पटांग बाजार के कामना युक्त क्रोध युक्त पदार्थों को ग्रहण करेगा तो विक्षेप होगा, जो आज हो रहा है। ये प्रेमपुरी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, बंबई वासियों के ऊपर, जिन्होंने दिव्य ज्योति, आप सबको पता होगा ऋषिकेश में जो कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ है वहां के पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज थे, और उसी कड़ी में षष्ठ पीठाचार्य थे विष्णु देवान जी महाराज। ये दोनों महापुरुष सौराष्ट्र के हुए हैं। विष्णु देवान जी महाराज की तो बहुत बड़ी कीर्ति है, इन्होंने इस 20वीं शताब्दी में उपनिषद के ऊपर बड़ा सुंदर व्याख्यान लिखा है। इस शताब्दी में किसी ने लेखनी नहीं उठाई उपनिषद के ऊपर, पर इन्होंने उपनिषद के जो भाष्य है, मंत्र है, टीका, आनंदगिरी टीका, तीनों के ऊपर जो है बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी है, जिस टिप्पणी का नाम है गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी, क्योंकि विष्णु देवान जी महाराज गोविंदानी के शिष्य थे, तो गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी है जो कि उपनिषद के मंत्रों को, शांकर भाष्य को और आनंदगिरी टीका के ग्रंथियों को, जो बहुत कठिन है रहस्यात्मक बातों को, उनका व्याख्यान स्पष्ट करता है। उच्च कोटि के महापुरुष हो चुके, और ऐसे महापुरुष थे, आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं, राजस्थानी फलौदी एक स्थान शहर है, मैं गया हूं स्वयं, फलौदी की घटना है लगभग 50 वर्ष हो गया होगा, फलौदी गए हुए थे महाराज जी, वहां पर बड़ी भीषण गर्मी थी, चतुर्मास कर रहे थे, पूरे 4 महीने में एक बूंद वर्षा नहीं हुई। फलौदी वासियों ने महाराज के पास आए, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बिना वर्षा के सारी खेती समाप्त हो गई, अन्न के लिए हम भटक रहे हैं, आप कुछ कृपा करें। महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा करो, कारीरी याग करो, याग से वर्षा होती है। महाराज जी की आज्ञा से याग कार्य संपन्न होने लगा। याग जो है पूरा संपन्न हो गया, फिर भी वर्षा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि हमने कर्ज करके पैसा लेकर इतना बड़ा भारी यज्ञ किया, पर एक बूंद वर्षा नहीं, उल्टा हो गया, ऋण भी हो गया, वर्षा भी नहीं हुई। महाराज ने कहा कि धैर्य धारण करो। सबको यज्ञ मंडप से बाहर कर दिया, स्वयं अकेले अंदर गए और अंदर जाकर के कुछ किन्नी मंत्रों से उन्होंने आहुति डाली। आहुति डालते ही तत्काल, मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, आकाश में धुआं की तरह से बादल आ गया और इतनी वर्षा हुई कि उस वर्षा से आज भी वहां का तालाब लबालब भरा रहता है। देखो महापुरुषों की ऐसी कृपा होती है। उच्च कोटि के विद्वान भी थे और भगवत तत्व को उपलब्ध महापुरुष भी थे। उसी कड़ी में ये प्रेमपुरी महाराज हुए हैं, जो कि ऋषि के हिमालय के कल्प वृक्ष को यहां पर बंबई ला करके बीजारोपण किया। एक कल्प तरु का अर्थ होता है, कल्प का अर्थ होता है समर्थ। देखो कल्प के दो अर्थ होते, यदि शास्त्रों को देखें ना तो कल्पते का अर्थ होता है समर्थ्यते, जो समर्थ है कल्प शब्द का। दूसरा कल्प शब्द का अर्थ है कल्पना भी, और तरु शब्द में त्रि संप्लवन तारणयो धातु है, तरंती तारणी तरु, जो स्वयं तरकर दूसरों को तारे पार लगाए उसका नाम तरु होता है। तो जो मनुष्य प्रेमपुरी महाराज जी का लगाया हुआ जो कल्प वृक्ष है, ये प्रेमपुरी आश्रम बंबई में, इसके आश्रय में, इसका आश्रय ग्रहण करता है, मतलब स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करता है, उसको वे स्वयं तारते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जब आप भगवान के शरण हो गए तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें पार लगाना, पर हमें निकट आना पड़ेगा। शंकर भाष्य में एक दृष्टांत बार बार आता है कि ठंडी से कोई पीड़ित व्यक्ति है, कांप रहा है भयंकर, पर जब तक वह अग्नि के पास नहीं आएगा तब तक अग्नि समर्थ होकर के भी उसके कंपन को, शीतलता को दूर नहीं कर सकती। समीप जाएंगे तब जाके अग्नि उसके ठंडी को, शीतलता कंपन को दूर करेगी। ऐसे ही जब हम इस कल्प वृक्ष का आश्रय लेंगे, आश्रय लेने से लोक परलोक दोनों ही सुधरता है। तो यहां पर देखो फड़ीना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो एक सीमित अहंकार अभिमान है, अभिमान हमेशा सांप की तरह से फुफकारता है, और ये जो जगत का सांप यह काट ले तो केवल एक जन्म बेकार होता है, परंतु ये जो सीमित अहंकार अभिमान है इसके डंग से तो हजारों जन्म खराब हो जाते हैं। तो ये फड़ीना का अर्थ है आपका अभिमान, और दूसरा जो है संशय सर्प, तीसरा लोभ सर्प, ये भी आभूषण बन जाते हैं भगवान शंकर के पास जाने के बाद। कपालम, ये शब्द है, कपालम का अर्थ होता है ये जो हमारा गर्दन के ऊपर भाग है। कपाल में दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, एक जीभ है और त्वचा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्द श्रवण करते हैं कान से, गंध का ज्ञान होता है नाक से, आंख से रूप को देखते हैं और त्वचा से स्पर्श होता है, और जीभ से हम विवेक करते हैं, बोलते हैं। जितना स्पर्श का ज्ञान कपोल से होता है उतना अन्य भाग से नहीं होता है। ये जो कपाल है जो ज्ञानेन्द्रियों का साधन है, ज्ञानेन्द्रियों मतलब कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो 5 का ज्ञान होता है, इस ज्ञान को करने के यंत्र यहीं पर फिट हुए हैं। तो इस ज्ञान का भी जो ज्ञान करता है वही कपाल है, इसीलिए हम लोग वेदांत में कहते हैं साक्षी भाष्य। तो जो शिव साक्षी है उसी के द्वारा हमारे ज्ञान का भी ज्ञान होता है। इसको घटा लीजिए, जैसे आप आंख से रसगुल्ला को देख रहे हैं, इसके बाद कान शब्द आपने उसका मूल्य श्रवण किया, हाथ से आपने पैसा देकर खरीद लिया, इसके बाद आप लाकर उसको खाते हैं, इसमें सारे इंद्रियों का उपयोग हो गया। आपने हाथ से पैसा देके खरीदा, आंख से आपने देखा, कान से मूल्य सुना और मुख में डाल लिया, जीभ से खा लिया। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग हो रहा है, इस ज्ञानों का, पांचों ज्ञानों का जो ज्ञान करता है, जिसके द्वारा स्मृति बनी रहती है, महीने के बाद भी आपको स्मृति आती है कि अमुक जगह हमने अमुक रसगुल्ला खाया था। इंद्रियों के भिन्न भिन्न होने पर भी पांचों ज्ञानों का साधन जो है, इन ज्ञानों का भी जो ज्ञान है वही समझो कपाल है, वही भगवान का एक खप्पड़ समझिए। इति यत, इतना ही भगवान का ये घर गृहस्थी चलाने का साधन है। एक भक्त भगवान शंकर की उपासना किया बहुत लंबे समय। भगवान शंकर प्रसन्न होकर जब वरदान देने के लिए आए, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, मैं वरदान तो मांग लूं परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू, आप ही बताओ कि मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा कि ऐसा है, तुझे मैं त्रैलोक्याधिपति बना लेता हूं, पूरा साम्राज्य दे रहा हूं। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे संसार का राजा बना देंगे परंतु पहले आप तो राजा बन जाओ, आप तो संसार में रहते हो, भिखारी हो, मुझे क्या राजा बनाओगे, जो आपके पास है वह दीजिए मुझे। भगवान बहुत हैरान हुए, बोले आश्चर्य की बात है। बोले अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तू राजा नहीं बनना चाहता है ना, तो ऐसा अपनी पत्नी के लिए कुछ सोना चांदी मांग के ले जा, तुझे नहीं चाहिए पर पत्नी को तो चाहिए। बोले ठीक है, सोना चांदी मुझे भी चाहिए परंतु आपके पास तो सोना चांदी है नहीं, आप तो कान में भी सांप लपेटे हो, सिर पर भी सांप, हाथ भी सांप, पहले तो आप सोना चांदी को धारण करो, मुझे क्या दोगे सोना चांदी आपके पास ही नहीं है। भगवान शंकर बोले बड़ा ये जो है विलक्षण भक्त है। भगत ने कहा कि जो आपके पास वही मुझे प्रसाद रूप से दीजिए। भगवान का ऐसा है ना, तुझे मैं बड़ा सुंदर सोने के लंका के समान राज महल बना देता। बोले कि ठीक है परंतु आप तो संसार में रहते हो, यदि आपके पास महल होता मकान होता तब तो मुझे देते, स्वयं तो संसार में रहते हो तो मुझे क्या दोगे बना के महल। भगवान शंकर बोले कि ये तो ऐसा भगत है कि बिना मैं वरदान दिए जा नहीं सकता, कि कुछ लेने को राजी नहीं। अंत में कहा कि ठीक है तुझे बढ़िया वाहन देता हूं। बोले कि ठीक है वाहन देंगे पर पहले आप तो वाहन रखो अपने पास, आपके पास बूढ़ा बैल, ये बूढ़ा बैल किस काम आएगा, पहले आप वाहन रखो तो मुझे देना। भगवान शंकर परेशान हो गए, बोले कि ये तो मुझे परेशानी में डाल दिया, तपस्या किया पर जो देता हूं इसको स्वीकार नहीं करता। भगवान शंकर बोले भाई तू ही बता मैं तुझे क्या दूं। बड़ा सुंदर बोला कि बस आप अपने चरणों की भक्ति दो, क्योंकि हमने सुना है कि नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, यदि आप मुझे ऐश्वर्य देंगे, धन देंगे, राजा बना देंगे तो मैं धन से मदान हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा, और आपके चरणों की भक्ति रहेगी तो मैं कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि धन पद का जो अहंकार इससे मनुष्य भटक जाता है। देखो भगवान शंकर की जो उपासना है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सुरास्ताम ताम रिद्धिम, इतने भी देवता लोग हैं कि सारे देवता भगवान की आराधना करके ताम ताम रिद्धि उन ऐश्वर्य को धारण करते हैं। भवद्भुत प्रणिहिता, जो भगवान के कृपा कटाक्ष विहित होता है, और अंत में लिखा नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, जो स्वात्मा राम है जो अपने स्वरूप में रमण करता है वह कभी भी विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं होता है। स्वरूप मनुष्य रमण तो करता है परंतु अज्ञानी जीव संसार में रमण कर रहा, हमेशा संसार के विषयों से ही हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये बड़ी भारी भ्रांति है और ये भ्रांति अनादिकाल से चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि बड़ा सुंदर मकान बना लो, जो है बैंक बैलेंस कर लो, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, आज्ञाकारी बेटा हो, 10-20 नौकर हो, फिर तो आराम से जीवन बीतेगा। ऐसी व्यवस्था करते करते बुढ़ापा आ गई, अब जो होना चाहिए वह भी नहीं रहा, जो हमारा स्वास्थ्य है, इंद्रियों का ऊर्जा, वह भी समाप्त हो जाता है। जब हम सुसुप्ति में जाते हैं, सुसुप्ति में ये मैं भी मर जाता है। हम लोग हर दिन मरते हैं, सुसुप्ति में जब मनुष्य जाता है तो जाने के बाद अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, इसका भी भान नहीं होता है। मतलब कि मैं भी मर जाता, समाप्त हो जाता है, वहां केवल एक ही साक्षी चैतन्य रहता है। जिस प्रकार से सुसुप्ति में कोई विषय नहीं है, न विषय से संबंधी द्रव्य है, नहीं वह जो आपका शरीर शरीर के साथ संबंध है, तब जाकर परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। वही अवस्था जागृत में बन जाए, मतलब जागृत में भी तमाम व्यवहार करते हुए अपने आपा को, मैं को संसार से पृथक करके विवेक करके जाने, जिसको हम कहते हैं पंच कोश विवेक प्रक्रिया। मैं अन्न में नहीं, प्राण में नहीं, विज्ञान में नहीं, मनो में नहीं, आनंद में नहीं, इन पांच कोशों से अलग करके जागृत में भी आप आत्मा को जान सकते हैं। पर जागृत में अनेक प्रकार के विषयों के प्रकाश से ये संयुक्त रहता है। स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में ये विषयों की रोशनी नहीं होती है। सपना में इंद्रियां जो है अपना काम करना बंद कर देती है, आत्मा स्वयं प्रकाश होता है। सुषुप्ति में भी कोई इंद्रियां नहीं है, शरीर का भान नहीं, पर जागृत अवस्था में इंद्रियों का ही व्यवहार चलता है और मैं पना भी रहता है, इसलिए पृथक करके वह जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए पंच कोश की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है और ये तभी संभव है जब महापुरुषों की कृपा हो। उपकोशल विद्या में प्रसंग आता है कि आचार्या दैव विद्या वृता साधिष्ठम प्रापदिति, आचार्य के श्री मुख से ही विद्या प्राप्त करके वह प्रतिष्ठित होती है। आप यदि कहें कि महाराज जो है आजकल हम बहुत व्यस्त हैं, इतने काम धंधे हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलता है कि प्रेमपुरी आकर स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करें, लोग बोलते हैं ना बहुत से लोग, और तर्क देते हैं, हमको कई लोग मिले, वो तर्क देते हैं कि बढ़िया जो है हम इंटरनेट पर जो प्रवचन सुन लेते हैं, है ना जी, सीडी चला लेते हैं, कैसेट ढूंढ लेते हैं। देखो मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात बोल रहा हूं, चाहे न्याय दर्शन हो या व्याकरण, दोनों दर्शन की जो आचार्य की परीक्षा होती है उसी में ग्रंथ है शक्तिवाद, दोनों को परीक्षा देना पड़ता है। आचार्य क्लास में पढ़ाया जाता है, उस शक्तिवाद में विचार किया है कि शक्ति तत्व क्या है, तो वहां पर लिखा ईश्वर इच्छा व शक्ति ही। यहां शक्ति शब्द का अर्थ कोई पावर नहीं लेना, शक्ति शब्द का अर्थ है कि किस शब्द के सुनने के बाद क्या ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए ये घट शब्द है, घट शब्द की शक्ति है गोल मटोल पदार्थ में, ये माला शब्द है तो माला शब्द की शक्ति है इस तरह से अनेक प्रकार के फूलों में शक्ति है, फूलों को लिया धागे में बांध जिसका नाम माला है। इसी प्रकार से शक्ति किसे कहते हैं तो बतलाया ईश्वर के इच्छा का नाम शक्ति है। ईश्वर ने संकल्प किया कि अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से श्रोता को ऐसा ज्ञान हो, इसी का नाम शक्ति है। जब हम हाथी बोलते हैं तो हाथी शब्द की शक्ति है बड़े भारी जानवर में, अपने आप हमारे मस्तक में आकार प्रकार बन जाता है, और यह सामर्थ्य न आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, न जो है टीवी पर, न सीडी पर, न कैसेट पर। भाई जो वक्ता है चेतन है, आचार्य गुरु प्रवक्ता चेतन है, वह अंतःकरण में संकल्प करता है कि अस्मात् पदात् वाक्यात् अयम अर्थो बोधव्यः श्रोतुः, हमारे श्रोता इस वाक्य से ऐसा अर्थ समझें। इस संकल्प होने के कारण से आचार्य के समक्ष बैठने तत्व बोध हो जाता है, पर टेलीविजन के अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि वो संकल्प करे कि हमारे वाक्य से हमारे दर्शक को श्रोता को ऐसा बोध हो जाए। इसीलिए जो है ना उससे तत्व ज्ञान की आशा करना ये दीवा स्वप्न है। इसीलिए जो है ना मैं आपको कह रहा हूं ताकि जो है हम लोग सन्मार्ग में प्रवृत्त हो। अब देखो समय पूरा हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सबकी रति मति गति भगवान के चरणों में लगी रहे और आप हमेशा स्वाध्याय प्रवचन का लाभ उठाते रहें। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 21. Thank you.

0: நமசிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமசிவாய.
1: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்தி சமத்தா வாசல் மெய் மாதாவ் ஸ்னேமி வேணோ ஆப் சர்வந்து. தைத்திரியோ ஆரண்யக் கீ தைத்திரியோபனிஷத் கோ லேகர் கே பிரசங்க சல் ரஹா ஹை மங்களாச்சரண் சம்பந்தி, ஜிஸ்கே அந்தர்கத் अभी तक ये बतलाया कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्व ऋषियों ने जिस वेदांत रहस्य को पद वाक्य और प्रमाणों से पुरस्कृत करते हुए हमारे लिए कथन किया, ऐसे उन ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूं। आगे पुनः संकेत कर रहे हैं, तैत्तिरीय सारस्य कहने लगे, यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसका सार क्या है, अर्थात इसका तत्व या इसका मूल जो है वो क्या है। उस सार को जानने वाले कौन जानने वाले हैं, तो उसके लिए संकेत किया विस्पष्टार्थ रुचि नाम। किनके लिए कहा, किनकी रुचि बतलाई, तो कहने लगे जो इसको सार को जानने वाले हैं। अब उस सार को जानने की है रुचि जिनकी, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम सार को प्राप्त करें, हम तत्व को प्राप्त करें, हम मूल को प्राप्त करें। यह जिज्ञासा तो प्राणी मात्र की, ऐसा नहीं है कि कोई प्राणी नहीं चाहता कि मुझे यह नहीं चाहिए, सभी चाहते। अब चाहने की स्थिति क्या है, तो देखो इसके लिए बड़ी मोटी भाषा में, जो भी प्राणी यह अनुभव करता है कि मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, जिसको भी ये अनुभव हो रहा, तो जिसे अपनी सत्ता का, अपने होने पने का बोध है, और जो भी जीवंत प्राणी है उस सबको ही अपने होने पने का बोध है, ऐसा नहीं कि उसे बोध नहीं। अब जब उसे अपने होने पने का बोध है, तो होना पना माने अहम करके मैं हूं। अब मैं हूं तो मैं हूं के साथ में जुड़ा हुआ है क्या, तो रुचि। वो रुचि क्या है, तो वो प्राणी मात्र की रुचि ये है, मैं हूं और मैं बना रहूं। ये कोई नहीं चाहता है कि मैं हूं और मैं न रहूं। समस्त प्राणियों के हृदय में, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों न, जिसे यह बोध है मैं हूं, तो उसकी एक गहरी अभिप्सा है, उसकी यह रुचि है कि मैं हूं और मैं बना रहूं। और इसी के साथ में और थोड़े आगे बढ़े तो क्या है, मैं हूं, मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं। तो ये जो है प्राणी मात्र के अंतर्गत ये रुचि बैठी हुई है। कहने लगे ठीक, तो मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं। दूसरी एक अभिप्सा और है, वो अभिप्सा क्या है, मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं और भी कुछ जानता हूं। कोई अपने को अज्ञानी कहने के लिए तैयार नहीं, संसार के अंतर्गत किसी को भी देखें तो वो कहेगा क्या मुझे पागल समझते, इसका मतलब क्या, वो अपने को बोधवान जानता है। तो कोई भी अपने को अज्ञानी स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो वह मैं हूं और उसके साथ में एक मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास जानकारी है और मेरा ज्ञान बना रहे। ये कोई नहीं चाहता है कि मेरा ज्ञान समाप्त हो जाए, मेरी जानकारी समाप्त हो जाए। तो मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं, ठीक इसी प्रकार से मैं जानता हूं, जानता रहूं और मुझे कोई बेवकूफ न बना सके। ये प्राणी मात्र की अभिव्यक्ति। तीसरी बात और आती है, मैं सुखी हूं और सुखी बना रहूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं। तो अब देखो, किसी भी प्राणी के हृदय में आप देखें तो ये तीन जो है रुचियां अभीप्साएं उसके हृदय में विद्यमान है। सभी का अभाव हो जाए पर इन अभीप्साओं का अभाव नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला, मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं, माने सत की अभीप्सा, अपनी सत्ता की, अपनी विद्यमानता की अभीप्सा। और विद्यमान कौन होता है, जो सत पदार्थ होता है। सत का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव। तो ये अभीप्सा किसको बतला रही, सत पदार्थ को। दूसरा, मैं जानता हूं, जानता रहूं, मुझे कोई बेवकूफ न बनाए। ये क्या है, ये ज्ञान की अभीप्सा। और ज्ञान कहां रहता है, चेतन में रहता, जड़ में कभी ज्ञान नहीं रहता। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, चित्त पदार्थ। तीसरी बात है, मैं सुखी हूं, सुखी बना रहूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं। ये क्या है, तो जो सुख कभी समाप्त न हो, जिसकी तुम चाहते हो कि कभी छीने नहीं तथा समाप्त न हो, तो ऐसा जो अनवर्थ सुख है उसका ही नाम क्या है, आनंद। उसी को क्या कहते हैं, आनंद। तो ये क्या निकला, प्राणी मात्र के हृदय में ये स्वाभाविक जो रुचि है वो रुचि क्या सिद्ध करती है, सत चित आनंद। सच्च चिच्च आनंदश्च इति सच्चिदा। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति। कहने लगे जो सर्वव्यापक परमात्मा, जो अनंत परमात्मा, वो यद्यपि सर्वत्र उसकी सत्ता है, लेकिन विशेष करके भगवान ने उसे बतलाने के लिए, क्योंकि सर्वव्यापक को हम जान नहीं पाते, तो क्या कह दिया, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा हृदय देश में विद्यमान है। तो कोई भी सत्ता है, वैज्ञानिक शोध करके और उस सत्ता को खोज लेते, और यदि इस प्रकार से भगवान कहते हैं तो हृदय को स्थापित जब कर देते हैं तो हृदय में रहने वाले को भी खोज लेंगे, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात में सफल नहीं। ये बात किससे सिद्ध होती है, इसमें अनुसंधान, कोई कर्म, कोई प्रक्रिया काम नहीं आती। इसमें क्या काम आता है, तो इसमें अनुभव ही काम आता है। अब जो है किस प्रकार से हम इसका अनुभव कर सकते हैं, तो मैं हूं मैं बना रहा हूं, जो ये रुचि है, ये अभीप्सा है, इस अभीप्सा के अनुभव से ही सिद्ध होता है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा कहां विद्यमान है, सर्वत्र होते हुए भी वो विशेष रूप से रुचि का जो है मने विषय होते हुए कहां विद्यमान है, तो हृदय देश में विद्यमान। जो अविषय कहा गया, जो अप्रमेय कहा गया, ऐसा वह अविषय अप्रमेय ही विषय रूप से कहां विद्यमान है, तो हृदय देश के, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में रह करके करता क्या है, तो क्या बतला दिया, का भ्रामयन, सबको भ्रमाता है, और कैसे तो बतला दिया यंत्रारूढ़ संकेत कर दिया। जैसी कठपुतलियों को इलेक्ट्रिक के संबंध से वह सूत्रधार उन्हें नचाता है का इसी प्रकार से वह इस हृदय देश में रह करके सबको नचाता ये संकेत कर दिया। अर्थात सबकी प्रवृत्ति का हेतु कौन है? ये हृदय में बैठा हुआ जब तक हमें यह बोध नहीं होगा कि मैं हूं तब तक किसी भी कामना का उदय हो सकता नहीं। जब तक कामना उदित नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की प्रवृत्ति संभव नहीं। प्रवृत्ति होती ही तब है मैं हूं और फिर मुझे चाहिए तब हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रवृत्ति में भी हेतु कौन है? कहा वही। और वो कहां विद्यमान है? तो कहा हृदय देश में। अब इतना अनुभव कर लिया जिसने, अब इतना अनुभव करके के बाद फिर उसने श्रवण किया, सुना। क्या सुना? सिया राम मैं सर्वम खल इदम। कहने लगे वह परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, उस परमात्मा की सर्वत्र सत्ता है। ये उसने सुना और ये जब सुना तो एक तरफ तो हृदय देश में सुना और उसका अनुभव किया और अनुभव करने के पश्चात फिर उसे सर्वत्र सुना कि वो सर्वत्र विद्यमान है। जो कुछ भी है ईशावासिमिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। कहने लगे हृदय देश में ही नहीं है, वो नक्शे लेकर के और सिख पर्यंत का उसकी सत्ता है। और कहा इतना ही नहीं है, जिसको तुम विषय बना रहे हो, जिसे तुम अपने ज्ञान का पात्र बना रहे हो। कहने लगे वो भी वही है यदि किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है। तो ये सर्वम खलिदम ब्रह्म करके कहा। अब जब ये बात सामने आती है इतना तो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा, लेकिन ये कोई स्वीकार नहीं कर पाता कि ये पुष्प भी परमात्मा है, ये चश्मा का खोल भी परमात्मा है, ये मेज भी परमात्मा है, यह जो है माइक भी परमात्मा है, ये जो है मकान भी परमात्मा, ये स्वीकार नहीं कर पाता। इतना स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा हृदय देश में विद्यमान है, लेकिन जहां श्रुति ये कहती है शास्त्र कहता सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है सब परमात्मा है। तो कहने लगे यही बात समझ में नहीं आती, कुत्ते में परमात्मा कैसे हो सकता है और चांडाल में परमात्मा कैसे हो सकता, वो तो मांस भक्षी है। और इसी प्रकार से जड़ में परमात्मा कैसे हो सकता, ये सारी की सारी जो है संशय की स्थिति उसके हृदय में आती है। और जब तक संशय नहीं होता है तब तक विचार की धारा चलती नहीं है। विचार शुरू ही होता है संशय को लेकर के, क्योंकि संशय रस्सी का काम करती है, विचार मथानी का काम करता है। यदि मथानी हो और उसमें रस्सी न लगी हो तो वहां मंथन होगा, और मंथन नहीं होगा तो उसमें से मक्खन भी निकाल पाओगे, ये नियम है। इसलिए यहां से विचार की सरणी को आगे बढ़ाने के लिए संकेत किया। किसके लिए संकेत किया? तो अभी तक जो चर्चा कर दी, जो विवेक से संपन्न हो गया, जो वैराग्य से संपन्न हो गया, और जो जिसको जो वेदांत के सार के विषय में जिसने वेदांत को सुन रखा, ऐसे उस जिज्ञासु के हृदय में क्या होता है? कहा रुचि पैदा होती है, माने जिज्ञासा पैदा होती, लेकिन वो सामान्य जिज्ञासा नहीं। वो कैसी जिज्ञासा है? तो संकेत कर दिया स्पष्टार्थ हो, स्पष्टार्थ रुचि न। और केवल स्पष्ट ही नहीं कहा, उसमें भी द्वि उपसर्ग लगा दी, विस्पष्टार्थ हो, विशेष रूप से स्पष्टतया जानने की रुचि वाला। अब सामान्य स्थिति नहीं, विशेष रूप माने उसके अंदर विशेष ललक है, विशेष उसके अंतर्गत जो है जानने की इच्छा है, अब और कुछ वह जानने को तैयार नहीं, कहता है कि पहले इसको जानूंगा, ऐसी इच्छा वाला। तो कहा विस्पष्टार्थ, विस्पष्ट रुचि वाला जो, उस विस्पष्ट रुचि वाले के लिए यहां व्याख्याकार कहते हैं आचार्य प्रसाद तह, पुनः शब्द दे दिया, पहले ऋषियों को प्रणाम किया, फिर कहने लगे आचार्य प्रसाद तह। तो आचार्य शब्द का अर्थ तो आप सुनते रहते हो, जो शास्त्रों में से उस सिद्धांत को एक पक्षी की तरह से चुनने में जो समर्थ है, और समर्थ ही नहीं जिसने चुन लिया है, ऐसे उस आचार्य की प्रसन्नता को लेकर के। और आचार्य जब प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, पिता पुत्र पर प्रसन्न होता है तो क्या करता, उसको अपना सब कुछ दे देता। गुरु जब शिष्य पर प्रसन्न होता है तो क्या दे देता है, अपना सब कुछ दे देता है। तो अपना उसका क्या है, अपना और कुछ नहीं, मठ मंदिर नहीं, वैभव नहीं, गुरु है ही वही जो ज्ञान से संपन्न है, वही उसकी संपत्ति है, वही उसका धन है। तो गुरु अपने हृदय का दान देता, अर्थात उसके हृदय में जो विद्यमान है उस हृदय को ही दे देता। भगवान ने भी अर्जुन को क्या माना, अपना शिष्य मान लिया, अर्जुन ने भी उन्हें गुरु मान लिया, तो भगवान ने भी क्या दिया, अपना हृदय दे दिया। और कह क्या दिया, जब हृदय दे दिया तो हृदय तो उनका, तो भगवान ने क्या कहा, कृष्ण क्या है, पार्थ क्या है, मे हृदयम, मेरा हृदय। और हृदय है तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयास करता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को अपना हृदय स्वीकार कर लिया तो उसकी हर तरह से रक्षा की। और इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं आचार्य प्रसादतः। और जहां पर पारस्कर गृह सूत्र में एक मंत्र आता है, जो आचार्य के पास में जब उपनयन के करने के, उपनयन संस्कार करने के लिए जो प्राचीन पद्धति थी शिक्षा की, उसके अनुसार जब जाते थे तो आचार्य भी उस मंत्र का उच्चारण करता था, और जब विवाह का प्रसंग आता है तो वहां पर भी इस मंत्र का उच्चारण कराया जाता। वो मंत्र क्या है, मम व्रते ते हृदयम ददामी, मच्चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम बाच मनः मेक जुसस्व। आगे भी प्रजापति ने स्टू करके संकेत किया लेकिन उससे मतलब नहीं। तो यहां क्या कहा, कहा मम व्रते, मेरे व्रत में, ते हृदयम ददामी, मैं अपने व्रत में तेरे हृदय को क्या कर रहा हूं, का नीत करता हूं। यही यह नहीं कहा कि तू मेरे व्रत में अपने हृदय को लगा, वहां तो वह पूर्ण योग्य होकर के आया, विस्पष्ट रुचि वाला है। तब आचार्य क्या कहता है, ददामी, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो ददामी शब्द जहां क्रिया आएगी वहां अहम शब्द का प्रयोग होगा। मैं क्या कर रहा हूं, अपने व्रत में और तेरे हृदय है को लगा रहा, तेरे हृदय को दे रहा। तो कहां दे रहे हो, कहा अपने व्रत में। कहा ये व्रत क्या, तो व्रत माने एक नियम, ये सही कह देते, और भी व्रत आप रखते हो है, शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, ये सब व्रत रखते हो, सोम मंगल कोई जो है अलग अलग व्रत रखते हैं, शनि आदि का, तो ये भी व्रत है। लेकिन व्रत शब्द का अर्थ क्या है, जहां व्रते शब्द कहा तो व्रतु धातु जो है परिपालन अर्थ में है, परिपालन अर्थ में जो व्रतु धातु, उससे जब व्रत शब्द बनता है तो उसका अर्थ क्या होता, परिपालन। परिमाने होता है चारों तरफ से, परि परितः सर्वतः इत्यर्थ, चारों तरफ से पालन करना माने रक्षा करना। तो तेरे हृदय को हम अपने व्रत में लगा रहे हैं का मतलब यह है, कहता है कि आज से जब तूने शिष्यस्ते हम कह दिया तो मैं भी अब जो है, हम गुरु अस्मि, मैं भी तेरा गुरु, और गुरु हूं तो कर्तव्य क्या है मेरा? शिष्य के कर्तव्य को अब नहीं कह रहा, शिष्य तो अपना कर्तव्य करके आ गया, शरण ले ली, समर्पण कर दिया, शिष्य हो गया। अब जो है गुरु का कर्तव्य क्या है? तो कहने लगे, कहा हृदयम ददामी, तेरे हृदय को मैं अपने व्रत में लगा रहा हूं, अर्थात अब तेरे हृदय की पूरी रक्षा करने का भार मेरे ऊपर, आज से मैं तेरे हृदय की रक्षा करूंगा। और हृदय क्या है तो सुन चुके, सतचित आनंद बैठा हुआ है जिसमें और जिसके द्वारा हृदय की क्रिया हो रही। लेकिन वहीं जहां सतचित आनंद बैठा हुआ, जहां क्रिया हो रही है, जहां अभिप्सा है, वहीं एक चीज और बैठी है। वो क्या है? तो कहने लगे, वहीं पर जो है अविद्या नाम की वस्तु भी बैठी। जहां विद्या बैठी है वहीं पर अविद्या है। आश्रय दोनों का एक ही है। इसलिए किसी हिंदी के कवि ने लिखा, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर बरसता है एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही। लेकिन आगे संकेत किया, ये सब तो हो रहा है, आगे कहा इतना होते हुए भी क्या होता है, पर यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। फिर कहा क्या ढंग होते हैं? तो इसका अर्थ तो समझते ही हो कि संकेत किया, एक ही जगह पर क्या है, पौधा जब पृथ्वी से जन्म लेता है, एक पौधा उत्पन्न होता है, और पौधा जब उत्पन्न होता है तो उस पौधे पर क्या है, एक ही पृथ्वी है, कोई दूसरी पृथ्वी नहीं, एक ही पृथ्वी है, और उस पौधे को वह पृथ्वी जो है खाद्य पदार्थ दे रही है,

0: आगे संकेत किया। छेद कर कांटा, किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का परकतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। क्या होता है? बढ़िया गुलाब का फूल, देखते पौधा उसका एक ही है, एक सा पानी मिला, एक सी हवा मिली, एक सी पृथ्वी पर, एक ही पौधे पर। अब वहीं पर क्या है, कांटा भी है और गुलाब का बढ़िया फूल भी उसी पौधे पर है। क्या कोई भेदभाव हुआ? कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग तो ईश्वर को दोष लगा देते, क्या कहते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया है। तुलसीदास लिख भी दिया, काल है कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। ये संकेत किया। अब जो है कांटा क्या करता है तो बतला दिया, तो वृक्ष पर जाओ तो उंगलियों को फाड़ देगा, वस्त्र में उलझ गया तो वस्त्र को ही फाड़ देगा, और जो तितली जो है जाती उसके पास में तो उनके बिचारियों के पंख जो है बड़े कोमल और बड़े जो है नाजुक होते हैं, उनको ही फाड़ देता, और भौंरा जाता है तो उसके ही शरीर को बेच देता। ये कर दिया। दूसरा संकेत किया, फूल लेकर तितलियों को गोद में, वही उसी पौधे पर क्या है, फूल भी है, लेकिन फूल क्या करता, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। तितलियों को है, तितलियां जाती हैं तो पुष्प इतना कोमल है कि उनको अपने ऊपर बैठा लेता है और उनको भी सुख देता है, स्वयं भी सुखी होता है, और भौरा आता है तो अपने पराग का उसे पान करा देता है, अपने रस का उसे पान करा देता है। और कहने लगे इतना ही नहीं, और क्या करता है, तो आगे और संकेत किया, कहने लगे कि ये सब करते हुए निज सुगंधों और है निराले रंग से, क्या करता है, निज सुगंधों और निराले है रंग से क्या करता, तो कहने लगे आगे कि खिला देता है जी की कली, जो भी उसे देखता है तो उसके मन को प्रसन्न कर देता। अब ये कहां हुआ, एक ही पौधे पर लेकिन दो रूप दिखलाई दिए, और आगे संकेत कर दिया,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह ससप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरिगतिप्रदं एतच्छिवपुराणं हि सप्त संहिता।

अन्तरिक्षा बृहस्पताये हविषा विधेमस्वाहा विश्वो ओ देवस्या नेतुर्मर्तो ओ वुरीत सख्यम् विश्वो ओ राज ईशुध्यति द्युम्नम् वृणीत पुष्यसे स्वाहा ऋक्सामजो शिल्पे स्थस्थे वामाराभे ते मा आपातम् आस्य

तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतं।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanakasabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये, गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां, श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे, नित्यं सन्निहितं किला कलयितुं क्षीराभिषेकादरं, श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां, ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய சதுர்த்த ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் ஸ்வபுத்ரஸ்ய அபிமன்யோர் மிருத்யுரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய அர்ஜுனஸ்ய ஆர்த்திஹந்தாரம் பாரத யுத்தே தஸ்ய விஜய பிராப்த்யர்த்தம் தஸ்மை பாசுபதாக்கியமஸ்திரம் ததத்தம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. வியூடம் த்ரோணஜயத்ரதாதி ரதிகைஹி சைன்யம் மஹத்கௌரவம் த்ருஷ்ட்வா கிருஷ்ணசஹாயவந்தமபிதம் பீதம் ப்ரபன்னார்த்திஹா பார்த்தம் ரக்ஷிதவான் அமோக விஷயம் திவ்யாஸ்திரமுத்போதயன் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி. द्रोणजयद्रथादिरथिकैः व्यूढं महत् कौरवं सैन्यं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तम् अपि भीतं तं पार्थं यः प्रपन्नार्तिः अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् रक्षितवान् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति. श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः महाभारतस्य द्रोणपर्वान्तर्गतानाम् अभिमन्युवधपर्वप्रतिज्ञापर्वजयद्रथवधपर्वणां कतिपयश्लोकानां सारः. भारतयुद्धे स्वपुत्रवधस्य प्रतिकृतिकरणाय जयद्रथं हन्तुं प्रतिज्ञातेन अर्जुनेन भगवता कृष्णेन साकं कृतं शिवाराधनं सङ्गृह्णन्ति. यः प्रपन्नार्तिः पार्थम् அமோக விஷயம் திவ்யாஸ்திரம் உத்போதயன் ரக்ஷிதவான் சஹ ஆர்த்தத்ராணபராயண பகவான் கங்காதர மே கதிஹி இதி. யஹ இதி வாக்யசேஷஹ. ப்ரபன்னார்த்திஹ ப்ரபன்னயோஹோ ஸ்வப்னே சரணமாகதயோஹோ கிருஷ்ணார்ஜுனயோஹோ ஆர்த்திம் பீடாம் யோஹந்தி சஹ பார்த்தம் அர்ஜுனம் அமோக விஷயம் அமோகாஹ சஃபலாஹ விஷயாஹ யஸ்ய தம் திவ்யாஸ்திரம் திவ்யம் திவ்யசரசிபவம் தச்சததஸ்திரம் ச திவ்யாஸ்திரம் தனுர்பாணத்வந்த்வம் பாஷுபதாஸ்திரம் இத்யர்த்தஹ. உத்போதயன் உத்தேஜயன் ரக்ஷிதவான் சங்கிராமே விஜயப்ராப்தி ரூபேண அனுக்ரஹகரணேன அரக்ஷத் சஹ ஆர்த்தத்ராணபராயண பகவான் கங்காதர மே கதிஹி. நனு குதோஹ பகவான் அர்ஜுனாய பாசுபதமஸ்திரம் ததாவிதி ஹேதுமாஹு. த்ரோணஜயத்ரதாதி ரதிகைஹி வியூடம் महत् कौरवं सैन्यं दृष्ट्वा भीतं तम् इति द्रोणजयद्रथादिरथिकैः द्रोणः पद्मव्यूहनिर्माता जयद्रथः पाण्डवेभ्यः तद्द्वारसंरक्षकः सिन्धुविषयाणां राजा द्रोणश्च जयद्रथश्च द्रोणजयद्रथौ तावादीयेषां रथिकानां रथप्रभूणां ते द्रोणजयद्रथादिरथिकाः तैः भारतयुद्धस्य त्रयोदशेहनि अभिमन्योर्घातकाः षण्महारथाः इत्यर्थः ते च द्रोणाचार्यकृपाचार्यौ दुर्योधनदुःशासनौ कर्णजयद्रथौ च इत्यवगम्यते भारतात् व्यूढं चक्रव्यूहापरनामकेन पद्मव्यूहेन निर्मितं महत् दुःखेन जेतुं शक्यं कौरवं कौरवपक्षीयं सैन्यं चमूं दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्यं ध्वन्यते तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूतपाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः तम् अपिर्विरोधे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मनश्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एव मुक्तः एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद् वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यं शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यं को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जेगीयते विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह पद्मव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र चक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः गांधारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतःसिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति। एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास। दुर्योधनादेशेन दुःशासनः तेन सह युद्धं प्रचक्रमे। व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्वारं जयद्रथेन पिनद्धं। तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतस्सः। अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति। क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौपपात। तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचश्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह। पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवतः शिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थ पाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोहन्तासि जयद्रथम् अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज। अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं। ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय। सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह। सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तम तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशाते अग्निवर्षसं। ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने। ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान् नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात् प्रीतो वरं भवः इति तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास सङ्ग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति जयद्रथवधप्रकारमाह एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधेधृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरःसिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरःसिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत समन्तपञ्चकात् बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत् तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धागच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम् भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शम्भवे ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संह्येयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லெசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கை ஏசே விரட்சி ஜோ ஏக பார் ஃபல் தேர் ஹு நஷ்ட ஹோ ஜாத்தே. ஜெய்ச தான் ஹை, ஜெய்ச மக்கா ஹை, ஜெய்ச கஹு ஹை, ஜவாரி ஹை, வீ பேட் மே ஹர் சால் ஃபல் நீ லே. அங்குரித் ஹோங்க, பரிணத் ஹோங்க, விரட்சே ரூப் ஜித்தா படனா தா பட் ஜாங்கே, ஃபல் லகேகா. ஒரு ஃபல் லகேக்காத் ஃபல் பாக்காந்த நஷ்ட ஹோ ஜாங்கே. ஓத பேட் நஷ்ட, ஜெய்ச கேலா ஹை உத்பன்ன ஹோகா, और उसमें फल लगेंगे. फल लगने के बाद वो खुद नष्ट हो जाएगा. इसी तरह जैसे धान का वृक्ष नष्ट होने से पहले वो सारे के सारे संस्कार को धान में छोड़ेगा, वो धान में विद्यमान वो सारे बीजत्व का संस्कार फिर वह धान में रहेगा, वह जमीन में बोएंगे, फिर वह भी नष्ट हो जाएगा. वो धान्य बीज फिर अंकुर में आएगा, वृक्ष में आएगा, फल में आएगा, फूल में आएगा, फल में आएगा, वो नष्ट हो जाएगा. संस्कार परंपरा अनादि अनंत काल तक इसी तरह जैसे बीज और वृक्ष का परंपरा चलता रहता है, इसी तरह क्षणिक विज्ञानवाद यह कि वो आत्मा पहले क्षण में उत्पन्न हुई हुई आत्मा वह दूसरे क्षण में नष्ट होती है, लेकिन नष्ट होने से पहले दूसरे क्षण में अपने ही संस्कार, अपने ही जाति, अपने ही सादृश्य चैतन्य ज्ञान गुण से युक्त दूसरी आत्मा को पैदा करके पहली आत्मा नष्ट हो जाती है. और दूसरी आत्मा भी अपने नष्ट होने से पहले पहले तीसरी आत्मा अपने ही जाति का, अपने संस्कार से, अपने गुण विशिष्टता को लेकर तीसरी आत्मा को पैदा करके वह दूसरी आत्मा नष्ट हो जाती है. इसी तरह तीसरी, इसी तरह चौथी, इसी तरह पांचवी, एक एक क्षण में संसार के हर वस्तु क्षणस्थायी है, एक ही क्षण में रहते हैं, उसी क्षण में नष्ट हो जाते. प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ, प्रतीत हुआ कि नष्ट हुआ. ये क्षणिक विज्ञानवाद ये बुद्ध दर्शन का ही एक अवांतर भेद है. उस बात को खंडन करने के लिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि यदि अलग अलग आत्मा अलग अलग समय में अलग अलग नई नई आत्मा उत्पन्न होते हैं, यदि तुम मानते हो तब फिर ये प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं होगा. ये प्रत्यभिज्ञा देखने में आता है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह आत्मा प्रतिक्षण उत्पन्न होकर नाश नहीं होता. ये बात प्रत्यभिज्ञा को तभी संभव हो सकता है जब एक ही आत्मा का अस्तित्व हो. प्रत्यभिज्ञा उस ज्ञान विशेष को कहते हैं जैसे उसको आप लोगों के प्रसिद्ध भाषा में स्मरण कह देते हैं, स्मृति, याददाश्त, मेमोरी. आप लोग कहते हो समझना, याद, उसी को वेदांत में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं. प्रत्यभिज्ञा और याददाश्त में अंतर होता है. कई कई बार याद जो है वह सादृश्य को देखकर स्मरण होता है. पहले कोई वस्तु देखा था, कई देखा था, किसी व्यक्ति को देखा था, कई देखा था, लेकिन बीच में भूल गए. स्वाभाविक ही है, व्यक्ति हर वस्तु को हमेशा स्मरण में नहीं रख सकता है. जब से आप होश में आ गए हैं, समझदार बन गए हैं, तब से लेकर आज तक आप लोगों ने कितने वस्तु को देखा है, कितने वस्तुओं का अनुभव किया है, तो क्या वो सब वस्तु की याददाश्त है अभी आपके पास? नहीं है, वो भूल गए हैं. लेकिन कभी उसी वस्तु के, उसी सादृश्य का वस्तु अचानक सामने आ जाता है, तो आप सोचने लगते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को, ये वस्तु को तो मैंने पहले

होती है। यदि पहले अनुभव नहीं किया होता तो फिर कभी भी प्रतिविज्ञा नहीं होगी, यानी स्मृति नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्मृति हमेशा अनुभव पूर्विका होती है। आप इस वाक्य को समझ गए होंगे, स्मृति यानी याददाश्त अनुभव पूर्वक होता है, पहले आपने अनुभव किया होगा तभी उसका कभी याददाश्त होगा, स्मृति होगी। यदि कभी भी आपने अनुभव नहीं किया है तो उसका स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है, अनुभव का स्मरण नहीं होता, अनुभव का ही स्मरण होता है। तो इससे क्या हुआ, पहले वाला आत्मा ने अनुभव किया और अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव कर रहा था उस समय मर गया। अनुभव करने वाला जिसने अनुभव किया था, अनुभव करने वाला आत्मा जिस समय अनुभव किया उसी समय वह अनुभव करते ही मर गया, तो कालांतर में उसकी समझना, उसकी स्मृति, उसकी याद कैसे रहेगी। उदाहरण के रूप में, कल के आप और आज के आप वही हैं कि अलग अलग हैं? कल भी प्रवचन सुनने आए थे, कल जो आए थे आप और आज जो आ रहे हैं आप, ये वही है कि अलग अलग है? बुद्धों का कहना है, क्षणिक विज्ञानवाद का कहना है कि कल का तो मर गया, खत्म हो गया, कल का कल था वो मर गया, फिर आज का कहां से आ गया? बोले वो जो मरने वाला आत्मा है उसने अपने जाति का अपने सादृश्य दूसरे आत्मा को पैदा करके मर गया। बुद्धों के क्षणिक विज्ञानवाद के हिसाब से तो कल से आज तक आप करोड़ों बार मर चुके हैं और करोड़ों बार आप पैदा हो चुके हैं, क्षणिक विज्ञानवाद। लेकिन ये मृत्यु और उत्पत्ति, मृत्यु और उत्पत्ति इतने झड़प से होता है कि आपको बीच में ज्ञाप अवकाश की प्रतीति नहीं होती है इतनी जल्दी से। इसलिए वो दो चीज का दृष्टांत देते हैं, एक तो देते हैं दीप शिखा का, क्षणिक विज्ञानवादी लोग, जैसे दिया जल रहा है तो वो जो दिए की लौ है वो जिस समय जल रही थी, आपने अग्नि संयोग किया और संयोग अग्नि के संयोग होते ही वो जला, जलते ही वो बुझ गया। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह बुझने से पहले फिर अपने जैसे दूसरी लौओं को पैदा करके वो बुझ गया, फिर वह बुझ गया, फिर दूसरे को पैदा किया वो बुझ गया, पैदा किया बुझ गया। तो ये सजातीय ज्योति को, लौओं को वह पैदा करते हुए पहले के नष्ट होना, दूसरे उत्पन्न होना, पहले नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, पहला नष्ट होना दूसरा उत्पन्न होना, वह इतने क्षणिक इतने झड़प से होता है कि आपको भ्रांति होती है कि वह वही का वही है। एक दृष्टांत दीपक का देते हैं, आज का विज्ञान भी ये मानता है, ये जो मरकरी जल रही है, बत्ती जो जल रहा है पावर में, वह इतनी जल्दी जल्दी बुझते हुए और जलते बुझते झड़प से करता है और उसी के चलते मीटर रीडिंग होता है। यदि वह बुझते हुए जलते हुए न करें तो वह रीडिंग ही नहीं हो पाएगा मीटर, उनका कहना। लेकिन वह इतनी तीव्र से होता है, कभी कभी लो वोल्टेज हो तो आपको भान होता है कि लप लप लप लप करता है, तो ऐसा क्यों हुआ? बोले लो वोल्टेज है इसीलिए। वही प्रमाण है कि ये बुझता हुआ जलता है, जलता हुआ बुझ रहा है, बुझना जलना झड़प से होता है। तो कोई किसी वस्तु को जोर से घुमाता है तो भ्रांति ये हो जाती है कि वो एक ही है, पंखा ही समझ लो, इतनी झड़प से है कि उसके पंखे के पंखड़ियां अलग अलग, भ्रांति नहीं होती है, अलग अलग हैं ये भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति होती है कि एक ही चीज घूम रहा है वो, जबकि वो तीन पंखे हैं, दो पंखे हैं, बंद की अवस्था में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो इतनी तीव्रता से चलते हैं कि वो पंखड़ियां वो ये दो अलग अलग हैं ऐसा भान नहीं हो पाता है। ये भ्रांति है, ये तीव्रता के चलते, ये सृष्टि और

0: उत्पत्ति संहार, सृष्टि और संहार इतनी तीव्र से होती है कि ये नष्ट हो गया, ये पैदा हुआ, ये भान नहीं हो पाता है। अभ्रांति होती है कि वही का वही है। इसको खंडन किया। प्रागप स्वाप समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, ये प्रत्यभिज्ञान से ही सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। नहीं तो जगने वाला व्यक्ति, गहरी निद्रा से जगने वाला व्यक्ति यह कह ही नहीं पाएगा कि मैं आज बहुत गहरी निद्रा में सोया था, और वही जो गहरी निद्रा में सोने वाला मैं हूं वही अब इस समय जगा हुआ हूं, और जो मैं इस समय जगा हुआ हूं वही कुछ देर पहले मैं स्वप्न देखता था, और जो मैं स्वप्न देखता था वही स्वप्न देखने के बाद गहरी निद्रा में गया, और जो गहरी निद्रा में गया वही मैं स्वप्न देखने वाला, और जो मैं स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत का अनुभव करने वाला। प्रत्यभिज्ञा को नहीं मानेंगे, एक आत्मा को नहीं मानेंगे, तो जागने के बाद स्वप्न की स्मृति किसी को भी नहीं होगी। आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, यह अनुभव भी यही बता रहा है, श्रुति भी यही बता रहे हैं कि आत्मा एक है, अनुभव भी यही बता रहा है कि स्वप्न देखने वाला जो व्यक्ति है वह मैं वही हूं। और ये प्रत्यभिज्ञा के अनुकूल ही तत्त्वमसि ये श्रुति वाक्य है। जैसे तत्त्वमसि ये वाक्य एक ही आत्मा को प्रतिपादन करती है, आत्मा की एक रूपता का प्रतिपादन करती है ये वाक्य, जैसे लोग में व्यवहार में स्वप्न देखने वाला, रात के स्वप्न देखने वाला वही मैं इस समय जागृत देख रहा हूं, तो ये प्रत्यभिज्ञा है, ये स्वप्न की स्मृति जागृत में। इसको क्या कहते हैं, स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का अनुभव हुआ, और उस स्वप्न में स्वाप्निक पदार्थ का जो अनुभव हुआ है वो अनुभव कर्ता कौन है, कर्ता कोई और है, और वही स्वप्न के स्वाप्निक पदार्थों का अनुभव करने वाला जो कर्ता है, आत्मा है, वही जागृत में आया है और अभी जागृत का अनुभव कर रहा है। अनुभूयमान अलग अलग हो सकते हैं, अनुभव कर्ता अलग अलग नहीं हो सकते। अनुभव के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु के बारे में उत्पत्ति नष्ट होना ये माना जा सकता है, ये तो सभी मानते हैं, ये तो वेदांती भी मानता है कि पदार्थ सब उत्पन्न होते, स्थित होते, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्थिर होते, नष्ट होते हैं, जगत ही क्षणिक है, जगत ही गतिशील है, नाशवान है, उत्पत्ति नाशवान है, दृष्ट नष्ट, ये वेदांत का वाक्य है। ये जगत का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, दिखाई पड़ता है नष्ट होता है, लेकिन यह दिखाई पड़ने वाला नष्ट होने वाले जगत के बीच में एक तत्व ऐसा मानना पड़ता है जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, वह है इस अनुभव का एक रूपता करने वाला साक्षी, पूर्व अनुभव का और पश्चात स्मृति का, और जागृत के अनुभवों का संस्कार के माध्यम से स्वप्न में देखने वाला। जो जागृत का अनुभव करता है वही उन संस्कारों को लेकर स्वप्न देखता है। जागृत में घट देखने वाला दूसरा हो और स्वप्न में घट देखने वाला दूसरा हो तो जागृत के घट की स्मृति न होगी, तो फिर स्वप्न में कोई भी व्यक्ति घट देख ही नहीं सकता है। जागृत में देखे हुए घट की स्मृति यदि उसके पास न हो, या जागृत में देखे हुए अनुभव का संस्कार उसके पास न हो, तो वह जागृत अनुभव के संस्कारहीन व्यक्ति कभी भी स्वप्न नहीं देख सकता। स्वप्न टोटल जागृत अवस्था का अनुभव है और वो संस्कार है। इसीलिए कई बार प्रश्न करते हैं कि स्वप्न यदि जागृत का ही अनुभव है तो कई स्वप्न ऐसा आते हैं जो जागृत में खुद अनुभव करना संभव नहीं है, फिर भी स्वप्न दिखाई पड़ता है, वो दृश्य दिखता है। कैसे माना जाए? जागृत का ही संस्कार है, कैसे माना जाए? इसके लिए अनेक उत्तर दिया गया है, अनेक ढंग से समझाया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक छोटा सा ग्रंथ है पंचीकरण, उस पंचीकरण ग्रंथ में सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, वहां सब दिखा दिया, लिखा है, स्पष्ट कर दिया है पंचीकरण वार्तिक के माध्यम से कि कैसे स्वप्न सिद्ध होता है, जागृत के संस्कार कैसे रहते हैं। बड़ा विचित्र ढंग से समझाया, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है जब उस बात का हम स्मरण करते हैं। कई बार हम मनुष्य होते हुए भी आकाश में पक्षी की तरह उड़ते हैं, यह अनुभव होता है स्वप्न में। स्वप्न में हम आकाश में उड़ गए, और जबकि जागृत में कोई मनुष्य आकाश में प्लेन के अलावा, ग्लाइडर के अलावा उड़ना संभव नहीं है। कोई ग्लाइडर हो, कोई प्लेन हो, तभी उड़ेगा वो। जब मनुष्य जीवन में यह अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर स्वप्न में उड़ते हुए का अनुभव कैसे हो रहा है? नियम के अनुसार तो जागृत में अनुभव होने पर ही स्वप्न में अनुभव होगा, जागृत में अनुभव नहीं होगा तो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। तो उसका उत्तर दिया है, संस्कार केवल एक जन्म के नहीं होते। मनुष्य में जो स्वप्न संस्कार हैं वह केवल मनुष्य जन्म के ही संस्कार नहीं है। संस्कार तो आप जितनी बार जन्म लिए हैं हर बार आपके पास अलग अलग संस्कार सन्निहित हुआ है। आप जब पक्षी बनकर आकाश में उड़ते थे वह संस्कार आपके चित्त में विद्यमान है, क्योंकि पक्षी का स्थूल शरीर आज नहीं है, लेकिन पक्षी बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है वही सूक्ष्म शरीर आज मनुष्य बनते समय भी है। और आज मनुष्य बनते समय का जो सूक्ष्म शरीर है वह कालांतर में, जन्मांतर में, पक्षी बनते समय में भी वही सूक्ष्म शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं, स्थूल शरीर ही बदलता है। हम मरकर यदि पक्षी होना होगा तो उस समय केवल ये मनुष्य स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, यही सूक्ष्म शरीर पक्षी के स्थूल शरीर में जाएगा। और पक्षी के समय में जो सूक्ष्म शरीर है वह पक्षी मरने के बाद यदि मनुष्य बनना होगा तो पक्षी के स्थूल शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर वही मनुष्य के स्थूल शरीर में आएगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार नाश होता है। सूक्ष्म शरीर बार बार पैदा होता नहीं और बार बार नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में नष्ट होता है, ध्यान देना, महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। स्थूल शरीर तो नष्ट होता ही है, साथ ही सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। सारे सृष्टि का जब प्रलय होना होता है तो तब आपका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। उस समय में यहां तक कि कारण शरीर भी नष्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन वह कारण शरीर का सद्भाव रहेगा। कहां रहेगा? तो वह परमात्मा में ही संस्कार के रूप में रहेगा। इसलिए कारण शरीर अनादि अनंत काल तक एक ही है। केवल ज्ञान से ही कारण शरीर नष्ट होता है, महाप्रलय में भी कारण शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से बना नहीं है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होने पर नष्ट नहीं होगा। स्थूल शरीर प्रारब्ध से बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होते ही स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से नहीं बना है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होकर स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर फिर किसके द्वारा बना, कब बना? सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के शुद्ध संकल्प से बना, और जब महाप्रलय में परमात्मा उस संकल्प का उपसंहार करता है तो सभी का सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब फिर जीवात्मा कहां रहते हैं? तो बोले कारण शरीर में रहते हैं। जब तक दोबारे सृष्टि नहीं होगी, जब दूसरी बार सृष्टि करना होता है तब ईश्वर अपने संकल्प से सारे सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करता है, तब जाकर वह इस कारण शरीर उस सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होता है, फिर वही प्रारब्ध के द्वारा स्थूल शरीर निर्माण होता है, तब फिर वह तीनों शरीर स्थूल शरीर में व्यक्त होते हैं। इस समय आपके पास तीनों शरीर भान हो रहा है, तीनों शरीर व्यक्त है। इस समय आपके पास तीन तीन शरीर हैं, एक शरीर नहीं है, तीनों शरीर है, तीनों शरीर का आपको भान हो रहा है। लेकिन जिस समय आप स्वप्न देखेंगे उस समय स्थूल शरीर का भान नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भान होता है। और जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, दोनों शरीर का भान नहीं होता है, केवल कारण शरीर का भान होता है। और उसी कारण शरीर में आप शरीर ही विद्यमान रहते हो और सुषुप्ति का अनुभव करते हो, और उसी अनुभव को लेकर जब आप जागते हो तब ये कहते हो कि आज मैं बहुत गहरे निद्रा में सोया, कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद आया। ये क्या है? प्रतिभिज्ञा है, इसी को कहते प्रतिभिज्ञा। प्रेमपुरी आश्रम आपने कल देखा था और आज भी देख रहे हो, तो यही प्रेमपुरी आश्रम है। ये कैसे आपको निश्चय होगा? प्रतिभिज्ञा, वो प्रतिभिज्ञा आपके पास है। कल देखा हुआ ज्ञान अनुभव आपके पास था, तब आप आए तो यही प्रेमपुरी आश्रम है और यही मुझे जाना है। कि आपकी सारी के सारी व्यवस्था वो प्रतिभिज्ञा से ही होती है, उसी को आप आपके व्यवहार में स्मृति कहते हो। कल की स्मृति ना हुई होती, प्रेमपुरी आश्रम यही है, ये स्मृति आपके पास ना रहती तो आप इस गेट से घुसते अंदर? है ये प्रतिभिज्ञा। देखो ये प्रतिभिज्ञा प्राणी मात्र में रहता है, केवल मनुष्य में रहता है ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र में प्रतिभिज्ञा रहती है। जैसे कई बार हमने देखा, पहले हम यहां पावलुआ में रहते थे, त्यागमूर्ति गणेशान जी का फ्लैट था पावलुआ में, ऊपर मलबार हिल के, तो आप लोगों को सबको पता है, पुराने लोगों का, तो वहां रहते थे। तब ये कबूतरों को दाना डाला करते थे, तो था वो तीसरे माने पांचवें फ्लोर, माने तीसरे पर था वो फ्लैट। तो हम क्या करते थे कि सुबह थोड़ा दाना, वो ज्वारी और मक्का चना रखा था, कोई भक्त ला के रख दिया था, स्वामी जी रोज डाल दिया करना, तो हमने कहा डाल देंगे उसमें क्या है, तो सुबह उठते थे डब्बा निकाल के डाल देते थे, और डालने के बाद ठीक टाइम में डालते थे और डब्बा ठक ठक ठक ठक बजा देते थे वो डब्बा, तो कबूतर सब वो आवाज सुनते ही आ जाते थे, खा के चले जाते थे। एक दिन हमने दाना नहीं डाला, ठक ठक कर दिया तो वो सब आ गए, आ तो गए, उसको दाना खाने को ही नहीं मिला, लेकिन दाना था नहीं। थोड़ी देर इधर खोजे, इधर खोजे, चले गए। दूसरे दिन भी हमने वैसे ही किया, उनको ठक ठक किया, आ गए, दाना खोजे, मिला नहीं तो उड़ के चले गए। तीसरे दिन भी हमने ऐसे ही किया तो नहीं आए। तब तो दो चार दिन के बाद हमने ऐसे ही किया लगातार एक हफ्ते तक, तो तब तो आना ही बंद कर दिया कि ये तो ये फ्रॉड बजा रहा है डब्बा। तो ये कैसे हुआ भाई? प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा ये उसकी स्मृति। तो प्रतिविज्ञा, पहले जो ये डब्बा बजाते ही हमको खाना मिलने वाला है करके जो आते थे, एक दिन पहले की जो अनुभव है उसका स्मरण करके दूसरे दिन भी आए, उसी का स्मरण करके तीसरे दिन भी आए, वो प्रतिविज्ञा है। अब प्रतिविज्ञा क्या बनी कि ये डब्बा बजने पर भी खाना नहीं मिलेगा, अब ये प्रतिविज्ञा बनी। तो दाना डालकर डब्बा बजाने पर भी वो नहीं आए, क्योंकि उनकी प्रतिविज्ञा क्या बन चुकी है, नहीं मिलने वाला है। अब वो फिर प्रतिविज्ञा बनानी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा जगत प्रतिविज्ञा पर चलता है। स्वयं देवदत्ता, ये जो प्रयोग करते हैं ना, ये वही व्यक्ति है। आप कैसे निश्चय कर रहे हो, पिछले बार जून में आया हुआ आत्मानंद वही है, ये प्रतिविज्ञा आपके पास है, वही निश्चय कर रहा है। इसलिए हम भी निश्चय कर रहे हैं कि पिछले बार आए गिरीश भाई वही है, हमारे पास वो प्रतिविज्ञा है, आपके पास वो प्रतिविज्ञा है। उस प्रतिविज्ञा से आप भी ये निश्चय करते हैं कि ये वही स्वामी जी हैं, और हम भी यही निश्चय करते हैं कि वही गिरीश भाई है। ये प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा जिसको अनुभव हुआ है उसी को होगा, अनुभव जिसको नहीं हुआ है उसको प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। तो अनुभव करता और प्रतिविज्ञा से सिद्ध होता है कि एक ही आत्मा जिसने अनुभव किया वही आत्मा प्रतिविज्ञा करता है। तो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला व्यक्ति वो प्रतिविज्ञा जागृत में, और क्योंकि उसको सुषुप्ति में अनुभव हुआ आनंद आया वो प्रतिविज्ञा है, इसलिए जागृत में चाहे जैसा भी आनंद का प्रसंग आवे उससे ज्यादा उसको सुषुप्ति में आने के कारण कहता है कि अब तो सोने दो, चलो बंद करो टीवी, बंद करो एक गप सप, क्योंकि उसको वहां विश्रांति है, वो प्रतिविज्ञा काम कर रही है। एक ही व्यक्ति माने बिना ये प्रतिविज्ञा की संगति नहीं होती। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान प्रागस्वाप समिति प्रबोध समये या प्रत्यविज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। मैं वही पहले सोने वाला, वही मैं अब जगने वाला, और जो ये मैं जगने वाला वही मैं सोने वाला, सोने वाला जगने वाले के बीच में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रत्यविज्ञा है, इसलिए आत्मा एक ही है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Munayaduvar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम मुनेडुवार है। चोल प्रदेश में एक स्थान है तिरुनीडूर। यहाँ की धरती शस्य श्यामल है और अमृत सदृश स्वाद अन्न उत्पन्न करती है। इसी स्थल के एक कृषक परिवार में मुने अडुवार का जन्म हुआ। यह इनका वास्तविक नाम नहीं, पर इनमें इसी नाम का नाम से स्मरण किया जाता है। इसका अर्थ है मोर्चे पर लड़ने वाला। उन दिनों सामंती राज्यों के बीच में प्रायः छोटे बड़े युद्ध चलते ही रहते थे। ऐसे में पराजित राजा स्वतंत्र सरदारों की सेना की मदद लेते थे। धन के लिए युद्ध करने वाले अपनी सहायता के लिए निश्चित मूल्य लेते थे। मुने अडुवार के पास वीर योद्धाओं की एक छोटी सेना थी, जिसे वे सहायता मांगने वाले सामंत राजाओं की सेवा में लगाते थे। वे स्वयं सेना का नेतृत्व करते थे और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते थे। ऐसी स्वतंत्र सेनाएं अधिक धन देने वाले सामंत की ओर से युद्ध करती थी। ये पेशेवर लड़ाकू धन के लिए अपनी वीरता का उपयोग करते थे। हमारे कथानायक भी इसी प्रकार के व्यवसाय द्वारा भारी मात्रा में धन अर्जित करते थे। इनकी सहायता का आधार देश अथवा प्रदेश के प्रति निष्ठा न होकर केवल धन होता था। इनकी विशेषता यह थी कि इस प्रकार से अर्जित संपूर्ण धन संपदा का प्रयोग मुने अडुवार साधुजनों और शिव भक्तों की सेवा में लगाते थे। त्रिनेत्रधारी प्रभु नीलकंठ शिव के भक्त को दान दक्षिणा देना, उन्हें पवित्र भोजन खिलाना, फल फूल दूध दही मिष्ठान आदि द्वारा उनकी सेवा करने में अपनी सारी अर्जित राशि नियमित रूप से व्यय करते थे। इसीलिए इनको शिव भक्तों में एक उत्कृष्ट स्थान मिला है। इसीलिए वे एक उत्तम कोटि के नायनमार या संत माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वीरता का प्रयोग करके धन राशि कमाया और उस धन का प्रयोग शिव भक्तों और शिव के मंदिरों में को ठीक करने में लगाया। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by महा मंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: जिसमें भगवती शक्ति का ही सारा सौंदर्यता, सारा भाव भरा हुआ है और शक्ति को इस तरह प्रतिष्ठित किया है शंकराचार्य जी ने। मान लो कि शक्ति की उपासना के बिना किसी की अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, यहां तक कि किसी भी क्षेत्र में गति नहीं हो सकती है। जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के प्रति इतना भाव बढ़ जाता है, इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास बढ़ जाता है। पहले मंगलाचरण श्लोक में ही उनकी प्रतिज्ञा है, सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवो देवम नखलु कुशल स्पंदितुम अपि अतस्त्वाम आराध्यम हरि हर बिरंच्यादि विरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कतमकृत पुण्य प्रभवति। यहां तक कहा है कि हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, शिवः जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वह चैतन्य स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान स्वरूप है इसमें कोई संदेह नहीं, आनंद स्वरूप है इसमें कोई संदेह नहीं, अद्वैत स्वरूप है इसमें भी कोई संदेह नहीं। शिव का मूल स्वरूप क्या है? सत चित आनंद अद्वैत। इसलिए उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमेव्योमन शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। मुंडक उपनिषद में परमात्मा के लिए कहा शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। देख लो सारे प्रपंचों का जहां जाकर उपशम हो जाता है, बाद हो जाता है, जितने भी प्रपंच हैं सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जहां जाकर उपशम अर्थात बाद हो जाता है, उस बाधाधिष्ठान शिव कैसे हैं? शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसे हैं वो। लेकिन ऐसे होने पर भी उस आनंद का अनुभूति तो हे देवी हे जगदम्बा आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। ले भगवान शिव आनंद रूप हैं, लेकिन उनके जो स्वरूप का जो आनंद स्वरूपता है वो आनंद तो तभी छलकता है जब आपका सान्निध्य होता है, समुद्र शांत होता है। लेकिन समुद्र में तरंग तो तब आता है जब उसमें वायु का झोंका पड़ता है, थोड़ा सा वायु का आघात पड़े तो वो शांत पानी में तरंग निकलने लग जाते हैं। अब थाली में पानी भर के रखो, उसको छो नहीं, पानी स्थिर रहेगा। लेकिन जरा सा फूंक मारो है, जरा सा स्पर्श कर दो, फूंक मारते ही स्पर्श करते ही उस पानी में तरंग निकलते हैं। इसी तरह उस शिव के जो परम आनंद रूपता है वो आनंद रूप तब तरंगायित होता है जब शक्ति से युक्त होता है। इसी प्रकार से वो उसका जो ज्ञान स्वरूप है, उनके उस ज्ञान स्वरूप में तरंग तब आएगा जब आपका सान्निध्य प्राप्त होगा। किसके? देवी के। इसलिए शिव शक्तिया युक्त हो यदि भवति सक्त प्रभवितुम, प्रभवितुम सक्त, किस काम को करने में समर्थ होगा वह शिव? कब? बोले जब शक्ति से युक्त होगा, जब आपसे युक्त होंगे तभी वो कुछ करने में समर्थ होगा, अन्यथा वो अस्तित्व रहेगा कर नहीं पाएगा। विद्युत तरंग का अस्तित्व है, विद्युत तरंग का अस्तित्व तो है, लेकिन वह विद्युत तरंग किसी भी तार में केबल में प्रवाहित हुए बिना वह पावर वह विद्युत कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वह तार भी केवल एक ही तार में प्रवाहित होकर कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए साइंस वैज्ञानिकों ने दो तार का प्रयोग किया, उन्होंने देखा दो तार का प्रयोग किया, एक ठंडा तार है और गर्म तार। गर्म तार में बिजली की उपस्थिति होने पर भी एक तार में उपस्थित हुआ वो बिजली कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ एक ठंडा तार का कनेक्शन जोड़ देते हैं तो वह बिजली सब काम करती है। गर्म करना हो तो गर्म, ठंडा करना हो तो ठंडा, प्रकाश करना हो तो प्रकाश, जो काम का वो सब कर देगा। इसीलिए गर्म तार स्थानीय भगवान शिव, ठंडा तार स्थानीय भगवती जगत जननी जगदम्बा, दोनों का पैरेलल पर जब गमन होता है और कहीं जाकर दोनों का कनेक्शन होता है, संयोग होता है, तब वह क्रिएटिव होता है, तब वह काम करने में समर्थ होता है। कौन? पावर। इसी तरह शिव शक्त्या युक्त हो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवो देवम कुशलम स्पंदितुम अपि। यदि शिव भी माने सत्ता भी, सत्ता और शक्ति ये दो अलग अलग चीजें हो अस्तित्व में, सत्ता अलग अस्तित्व है, शक्ति का अलग अस्तित्व है, लेकिन सत्ता और शक्ति का जो समन्वय है वही कार्य करने में सक्षमता को पैदा करता है। नचे देवम देवो कुशल स्पंदितुमपि, यदि शक्ति से युक्त नहीं हुए शिव तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। होंगे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। शक्ति से युक्त न हो तो शिव नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि सत्ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। व्यक्ति होना अलग चीज है। घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति हो तो घर में है तो सही, लेकिन क्या घर में रसोई बना पाएगा वो बुढ़ा व्यक्ति? उसका अस्तित्व तो घर में विद्यमान है, लेकिन उससे कहो कि रसोई बनाओ तो वो तो निष्क्रिय है। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। वो कहेगा मैं हूं तो सही, लेकिन मेरे में करने की क्षमता नहीं है, कहेगा कि नहीं बूढ़ा व्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो तुम मर गया? बोले मरा तो नहीं हो, जिंदा हो। जिंदा है तो क्यों नहीं करता? बोले अब करने की क्षमता नहीं है। ये देख लो, यही तो शिव शक्ति है। शिव अस्तित्व में तो रहेंगे, लेकिन वो अस्तित्व क्रियाशील तब होगा जब शक्ति से युक्त होगा। यही कारण है कि सृष्टि के आरंभ से ही अतस्त्वाम आराध्य हरि हर विरिंच्यादिवीरपि, शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसीलिए शिव भी आपकी आराधना करते हैं, विष्णु भी आपकी ही आराधना करते हैं, ब्रह्मा भी आपकी ही आराधना करते हैं, इंद्र भी आपकी आराधना करते हैं, सभी ने आपकी आराधना की है, तो फिर हम भी आपकी आराधना किए बिना कैसे रह पाएंगे? ये देखो, शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी इस तरह आरंभ किया 100 श्लोकों का। इसी तरह शिव की उपासना, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है देख लो। शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध शिव का स्वरूप तो पूरे वेदांत दर्शन में प्रतिपाद्य है। ध्यान देना आप लोग, शुद्ध शिव का स्वरूप तो सारे वेदांत दर्शन में प्रतिपादित है। उपनिषद ने वर्णन किया है, ब्रह्मसूत्र ने वर्णन किया है, गीता ने वर्णन किया है, दर्शन शास्त्र ने उस शुद्ध शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन शक्ति से युक्त हुए हुए शिव का स्वरूप कैसा है? उस स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए शिव भक्ति से वो तत्प्रोत शंकराचार्य ने 100 श्लोकों का शिवानंद लहरी की रचना की, शिवानंद लहरी। अब यही कारण है कि देखो, हमारे भारत भूमि में अनेक आचार्य हुए हैं, बहुत से आचार्य एक देव उपासनावाद से ग्रसित हैं। एक देव उपासना बहुतों की मान्यता है, वैष्णव खाली विष्णु को ही देवता मानेंगे और कहेंगे कि नहीं विष्णु की ही उपासना करो, कोई कृष्ण को देवता परमात्मा मानेंगे और कहेंगे कि केवल परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा को छोड़कर और कृष्ण को छोड़कर और किसी का आश्रय में मत जाओ, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, यहां तक कह दिया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ऐसे समन्वयात्मक आचार्य हुए उपासना क्षेत्र में, उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए भी पूरा का पूरा भाव विभोर होकर अपने सारे हृदय को खोल दिया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ऐसे स्तोत्रों की रचना की है, अद्भुत है। विष्णु की उपासना के लिए, विष्णु भक्ति के लिए भी ऐसी ऐसी रचना है। कहां अद्वैत वेदांत के परम आचार्य भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, अविनय विपनय अपनय विष्णु, हे विष्णु आप महान हैं, मैं क्षुद्र हूं। क्षुद्र होने के कारण ही हो सकता है कि मुझमें बहुत गलती हो। अभिनय, मेरे जीवन की जो उद्दंडता है, अभिनयता है, मेरे मन के चलते ये समस्या आई है। अभिनय अपनय, मेरे जीवन की जो अविनयता है, ये दुर्गुण है, और इसी अविनयता, यही दुर्गुण के चलते मेरे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे पहले महाराज मेरी इस अविनयता को आप हटा दो। दमय, समय मन, मेरी मन को आप कंट्रोल कर दो, रोक दो। मेरा मन बड़ा चंचल है और बहुत उच्छृंखल है। दमय मन समय विषय मृग तृष्णा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि यह विषय केवल मृग तृष्णा है, लेकिन मेरा कहा माने तब ना, कौन? आप भी समझाते हो अपने बच्चे को कि बेटा ये गलत काम है, आपका समझाना माने तब ना, मानता नहीं है। मृग को हजार समझाओ कि अरे हिरण, हे मृग, मरुभूमि में पानी तीन काल में नहीं हो सकता है, लेकिन आपका कहा वो माने तब ना, वो प्यास से छटपटा रहा है और दौड़ रहा है मरुभूमि की तरह। मृग कहता है कि तुम्हारे कहना मैं कैसे मानूं कि वहां पानी नहीं है, दिख रहा है मुझे इतना बड़ा सरोवर, देख लो। तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, महात्मा हजार कहें कि आनंद भीतर अंदर है, महात्मा हजार बार कहें, हजारों महात्मा आकर कहें आनंद अंदर है, समझाएं, तब भी तुम्हारे मन और इंद्रियां मानती है, है? मानती है। सुबह हुआ कि आमरस के कटोरी के तरफ मन दौड़ता है, आमरस नहीं बना है लेव जी, विषय मृग तृष्णा। वेदांतियों ने बार बार विषयों को तो केवल मृग तृष्णा कहा है, मृग की तृष्णा यानी मरुजल, ये विषय मृग तृष्णा, ये मरुजल। न कभी इन मरुजल के पानी से किसी का प्यास मिटा है, न किसी मरुजल के देखने वाले दिखाई पड़ने वाले मरुजल से किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ है, केवल मृग तृष्णा है। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आपका न इंद्रिय मानता है न मन मानता है। आज एक सज्जन आकर कहने लगे हमसे, महाराज खूब बारिश हुई है, आज तो पकौड़ा खाने का दिन है। बोलो पकौड़ा भी किसका पता है, उन्होंने तो बोल दिया हमारे से, कांदे के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, वाह क्या कहना। देखो आज तो पकौड़े खाने का दिन है, प्याज के पकौड़े खाने का दिन है, देखो क्या बारिश हुई है। ले जी विषय मृग तृष्णा, मान रहा है तुम्हारी इंद्रियां मान रही हैं, मान रहा है तुम्हारा मन। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन भी नहीं मानता, कहा तो मैं रहा हूं, समझा तो मैं रहा हूं, लेकिन नहीं मानता। और हमने कई बार सुना है महापुरुषों से और शास्त्र में कई बार पढ़ा है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए शायद आप चाहो तो वह दमय है, समय मन दमय विषय मृग तृष्णा और भूत दयाम विस्तार आया। हे भगवान, संसार के सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव विस्तार हो, सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव विस्तार हो। तारय संसार सागरत, जब तक जिए तब तक हृदय का भाव ऐसा हो कि सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जावे तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएं, और इन इंद्रिय और अंतकरण के बस में होने की जो पराधीनता है, इन पराधीनताओं से हम मुक्त हो जाएं। तारय संसार सागर, अतः आपकी कृपा हुए बिना हम संसार सागर से नहीं तर पाएंगे। क्या विष्णु भक्ति का भाव, छह श्लोक। आज वैष्णव लोग भी, घर घर में कट्टर वैष्णव भी शंकराचार्य जी की इस रचना का नित्य पाठ करते हैं। क्या समन्वय है। शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि हम अद्वैत वेदांती हैं तो क्या सगुण ब्रह्म की, सगुण परमात्मा की उपासना करें, हमको क्या जरूरत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमारी स्थिति है, हम सगुण साकार में क्यों जाएं? नहीं। इसी तरह शक्ति उपासना, विष्णु, गण, कृष्ण, शिव, देख लो क्या समन्वय कर दिया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा समन्वय कर गए, ऐसा समन्वयात्मक आचार्य दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा नहीं हुआ है। विष्णु को भी भगवान ही माना है शंकराचार्य ने, शिव को भी भगवान ही माना है, कृष्ण को भी भगवान ही माना है, देवी को भी भगवती ही माना है। वैष्णव लोग व्याख्या करते हो, कोई हो तो नाराज नहीं हो जाना। भगवान शिव को भगवान नहीं मानते। हाँ, भगवान शिव को क्या मानते हैं पता है? भगवान विष्णु के परम भक्त है, देख लो। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं शिव। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान शिव के अनंत अनन्य भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा। साक्षात परमात्मा है बस। देखो क्या उदारता है उनके चिंतन में, उनके विचारों में कहीं संकीर्णता नहीं दिखता है, दुराग्रता नहीं दिखती है, पूर्वाग्रता नहीं दिखती है। क्या समन्वय है। ऐसे जो आचार्य हैं उनकी ये रचना शिवानंद लहरी, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम जब काठमांडू नेपाल से आए तो हमारे चिमन भाई प्रेमपुरी आश्रम के कार्यकर्ता सक्रिय, उन्होंने फोन किया कि महाराज आप एक महीना के लिए हर साल आते हो तो इस साल जो है शाम के विशेष कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, विशेष प्रवचन आपका हम रखना चाहते हैं। हमने कहा रख लो भाई। तो किस विषय पर आप बोलेंगे? तो हम तो निर्विषय पर बोलने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विषय है, कोई विषय है क्या? तो फिर भी कुछ न कुछ तो एक आधार तो रखना ही पड़ता है। तो हमने कहा तुम जो कहोगे वो हम उस पर बोलेंगे। तो हमारे शिष्य मोहनीश ने कई टॉपिक्स सुझाया था, उसमें शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्रों का लिस्ट उनको दिया होगा, ये चीज है, इन पर यहां खास विचार नहीं हुआ है प्रेमपुरी आश्रम में। तो इनमें से आप जिस स्तोत्र को या जिसको आधार चाहें उस पर विचार करें। तो हमने कहा शिव भक्ति से भरा हुआ एक ग्रंथ है आदिगुरु शंकराचार्य जी का, उस लिस्ट में शिवानंद लहरी ये नाम भी आया हुआ था। हमने कहा इसी पर प्रवचन करेंगे, चलो। तो वही यहां लिख दिया हमारे चिमन भाई ने, और उस पर आज हम विचार करने के लिए बैठे हैं। शिवानंद लहरी नाम भी बड़ा आनंद है। तीन चीज इस वाक्य में है, एक है शिव, दूसरा है आनंद, और तीसरा है लहर, लहरी। आनंद जब शिव से छलकने लगता है तो लहर हो जाती है। है। जो आनंद शिव में सीमित रहता है वह जीव का अनुभव गम्य नहीं होता। जीव का हम बात ये कह रहे हैं, हम लोग भ्रांति न हो आप लोगों को, वैष्णवों के सामने एक बड़ी भारी समस्या है। शिव में आनंद है लेकिन जीव अलग ही रहेगा तभी शिव के आनंद का अनुभव कर पाएगा। शिव जीव की एकता हुई तो शिव के आनंद का जीव कैसे अनुभव, जीव ही नहीं रहा। ये बड़ी भारी समस्या है वैष्णवों को, इसलिए उनको द्वैतवाद कहते हैं। समझे कि नहीं? यदि आप लोग वैष्णव हो तो भी सिद्धांत तो अपना सिद्धांत तो आप लोग समझते ही होंगे। वैष्णवों को द्वैतवाद कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। यदि शिव और जीव की एकता मान लो, दोनों जीव शिव ही हो गया, तो फिर शिव में रहने वाला जो आनंद है वो आनंद का अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने वाला जीव तो खत्म हो गया, तब तो शिवानंद का अनुभव गम्य नहीं रहेगा। शिव में रहा जो आनंद, इसलिए जीव शिव से भिन्न ही रहना चाहिए ताकि बड़ा आनंद का अनुभव करे। तो हम इसका उत्तर दिया करते हैं, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को परमात्मा से भिन्न ही रहना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो इसका मतलब परमात्मा में जो आनंद है वो अपने में होने वाला आनंद परमात्मा को मालूम ही नहीं है, यही ना? परमात्मा आनंद स्वरूप है ये तो तुम कह रहे हो, मान रहे हो, और उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को अलग रहना पड़ेगा तुम कह रहे हो, इसका मतलब परमात्मा को अपने में जो आनंद है उसका अनुभव नहीं है, उसके अनुभव करने के लिए उसको जीव बनना पड़ेगा। तो क्या ऐसा संभव है क्या? परमात्मा अपने में जो आनंद है उसका अनुभव करने के लिए वह जीव बने तब जाकर अपने में विद्यमान आनंद का तो अनुभव कर पाएगा, लेकिन जब तक जीव नहीं बनेगा अपने में रहने वाले आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाए क्या? है? परमात्मा जीव क्यों बना बोलो? परमात्मा जीव क्यों बना? वैष्णवों के हिसाब से द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो ये परिभाषा करनी पड़ेगी कि अपने में विद्यमान जो आनंद है उस आनंद का उपभोग अनुभव करने के लिए वह जीव बना, ये कहना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं, हम माने अद्वैत वेदांत ये कहता है, जीव शिव की एकता क्यों चाहते हो तुम? तो हमारा कहना यह है कि जीव जब तक शिव रूप नहीं होगा शिव में विद्यमान आनंद का अनुभव नहीं करेगा। अब वो लोग कहते हैं अनुभव करने के लिए अलग होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो अलग नहीं होगा उसको अनुभव नहीं होगा अपने के आनंद का। इसका मतलब भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपने में जो आनंद है उसका उनको अनुभव नहीं है, क्या ये माना जाए? हाँ, अद्वैत में और ज्यादा आनंद का अनुभव होता है जाने तो, इस पर हमारा दुराग्रह नहीं है, लेकिन वैष्णवों की परिभाषा के अनुसार शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं जब शिव में जो आनंद है, परमात्मा में जो आनंद है, यहां शिव शब्द का अर्थ तो परमात्मा ही ले लेना बाबा, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद को जब शक्ति से संपर्क होगा, शक्ति से युक्त होगा वो शिव, आप वेदांत की भाषा में कहो ब्रह्म में जो आनंद है वह जब माया से युक्त होकर माया में प्रतिबिंबित होगा तो वह सर्व अनुभव गम्य होगा, वह हृदय अनुभव गम्य होगा। हाँ, वो हृदय गम्य होगा, अन्यथा हृदय का बाध करना पड़ेगा तब जाकर। अब हृदय का जब बाध करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो स्वरूप का आनंदों का अनुभव होगा, हृदय से आनंद का अनुभव जो होगा वह लहर होंगे, तरंग होंगे, तो वो तरंग ही है वो आनंद का छलक जा रहा, आनंद छलक रहा है। तो उसको, उस भाव को व्यक्त करने वाला ये स्तोत्र ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिवानंद लहरी। शिवानंद लहरी के पहले के कुछ श्लोकों को शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में रचना की है। अब आप लोगों को छंद कितना बोध है, शिखरणी छंद, महिमनी स्तोत्र तो आप गाते हो ना, वो शिखरणी छंद में है। दुर्गा क्षमापन स्तोत्र आप लोग गाते हो कि नहीं, न मंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, शिखरणी छंद में। महिमना पारंते परम विदुषो यद्यस दृशी, शिखरणी छंद। इसी तरह पहले के कुछ श्लोके हैं शिवानंद लहरी के, शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में गाया है, लिखा है। 100 श्लोक हैं शिवानंद लहरी में। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह नियम रहा है कि परमात्मा भी आनंद रूप है, मंगल रूप है, और आदि गुरु शंकराचार्य खुद शिवजी के अवतार होने के कारण वो भी मंगल रूप है। न शिव में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, न शंकराचार्य जी में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, और शिव की जो भक्ति है, स्तोत्र की रचना है, वो खुद ही मंगलमय है, अमंगल की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। फिर भी शंकराचार्य जी ने पहला श्लोक मंगलात्मक, पहले श्लोक से मंगलाचरण की है। हमारे वैदिक परंपरा में ये रहा है कि हम कुछ भी करें मंगलाचरण करके करें। मंगलादीनी, मंगल मध्यानी, मंगलांतानी, कम से कम 3 बार मंगलाचरण करो। पहले मंगल करके कार्य आरंभ करो, फिर बीच में विश्रांति के समय में कार्य विश्रांति में मंगलाचरण करो, और कार्य के पूर्णता समाप्ति में भी मंगलाचरण करो, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, श्रेय मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे, वो सारे विघ्न ना आवे इसके लिए मंगलाचरण करो। मंगलाचरण करने का 2 प्रयोजन है, एक तो विघ्नों को रोकना, विघ्नों के प्रवेश से रोकना, दूसरा प्रयोजन है कि मंगलाचरण करके कार्य आरंभ करोगे तो कार्य सफलता में कार्यकर्ता को अहंकार नहीं होगा। क्या समझे? 2 प्रयोजन से मंगलाचरण करना है। मंगल परमात्मा है, उनका स्मरण करते हुए कार्य आरंभ करना ही मंगलाचरण है। और मंगलाचरण का यह है कि हे भगवान, मैं जो काम पूरा करने, जो काम आरंभ करने जा रहा हूं, मैं अल्पज्ञानी, अल्पशक्तिमान होने के कारण ये पूरा होवे चाहे ना होवे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण ये आरंभ किया हुआ कर्म आपके कृपा से तो निर्विघ्न पूर्ण हो सकते हैं, यदि आपकी कृपा न हो तो मुझे भरोसा नहीं कि ये निर्विघ्न पूरा हो। एक तो विघ्न बहुत हैं, दूसरा मैं अल्प शक्ति वाला हूं, अल्पज्ञ हूं।
5: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi. presented by Swami Sri Dharmanandi ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: तो मनुष्य जब अपने सर को भगवान के चरण में झुकाता है तो अभिमान भी भगवान शंकर उसको अपने चूड़ा में लपेटकर आभूषण बना लेते हैं। अभिमान में खाली स्व जोड़ना है, स्वाभिमान बन जाता है। स्व का अर्थ है स्वरूप विषयक जो अभिमान, अहम ब्रह्मास्मि, तो वह भी भगवान के चरणों का आश्रय लेने से शोभा बन जाता है। इसके बाद जो है भगवान हाथ में कंगन धारण करते हैं, कंगन की जगह जो है सांप है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बड़ा लोभ है। प्रजापति ब्रह्मा के पास दानव मानव और दैत्य तीनों गए उपदेश के लिए, एक साथ पहुंचे तो उपदेश में भेद कर नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परोक्ष उपदेश दिया, द द द तीनों कहा। जब जो है दैत्यों को द कहा तो पूछा कि क्या तुमने हमारे अभिप्राय को समझा। दैत्यों ने कहा कि दयध्वम, हम लोग बहुत हिंसा करते हैं। इस द का तात्पर्य कि दया करो। मनुष्यों से पूछा कि द का अर्थ क्या है, मनुष्यों ने कहा कि दान। देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा कि हम लोग

है, बाणासुर है, भस्मासुर है, तो वहां पहुंच गए कि बस दो दो हाथ हो जाए, दुनिया में कोई रहा नहीं लड़ने वाला। कि मनुष्य कुछ संतोष नहीं होता है, ये लोभ ऐसी वृत्ति है। ये लोभ वृत्ति यदि आप भगवान के चरणों में अपने द्रव्य का, शरीर का, मन का, वाणी का यदि आप दान देते हैं, तो यही जो है मोक्ष कारक हो जाते हैं। जैसे कि गंगा जी में बरसात के गंदले नाले जब पहुंचते हैं, तो नाले नाले नहीं रहते, बल्कि साक्षात गंगा हो जाते हैं। जब तक गंगा से उस नाले का संयोग नहीं होता है, संपर्क नहीं होता है, तब तक लोग नफरत करते हैं। भूल से ही पैर पड़ जाए तो आप धोते हैं, नहाते हैं। वही गंदला नाला गंगा इससे संबंधित हो गया, मिल गया, तो उसको गंगा कहते हैं, संकोच नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये जो बंधन कारक जो हमारा संशय है, अभिमान है या लोभ है, ये वृत्तियां जब भगवान से संबंधित हो जाती हैं, तो फिर ये पवित्र हो जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं, दूषण ही आभूषण बन जाता है। एक बार की घटना है, एक भक्त बहुत ही कंजूस थे। उनके पड़ोसी कहा करते थे कि भाई कम से कम तो सोमवार का दिन है, एकादशी का दिन है, मंदिर जाया करो, कुछ नहीं तो कुछ वहां भगवान को फूल पत्ती चढ़ाया करो। वो बोले कि हमें मंदिर मुंदिर जाना नहीं है, अभी मैं जवान हूं, बूढ़ा होने के बाद जाऊंगा। पर हर दिन पड़ोसी कहते, बेचारा परेशान हो गया। सुनते सुनते बोला कि कब तक सुनूं, चलो आज जो है सोमवार का दिन है, पास जैसे बाबुलनाथ महादेव ऐसे कोई मंदिर था, पहुंच गया। सोमवार के दिन शिव मंदिर में लंबी कतारें लगती हैं, लंबी कतार लगी थी, खड़ा हो गया। जैसे नंबर आया, एक अपने हाथ में सोने की मुहर रखा था, ताकि लोगों को कहूंगा कि आज हमने एक मुहर दान दिया है। अब बेचारा जब पहुंचा, सोचा जरा देख तो लूं, जब खोला तो पसीना पसीना, कहा कि देख मैं भी रो रहा, तू भी रो रहा, पॉकेट में रख लिया, वापस आ गया। साथियों ने पूछा, क्या तुमने सोने की मुहर चढ़ा दी? मतलब बस बात बंद कर दो, बेचारा रो रहा तो कैसे चढ़ाता, हमारे पास इतना दिन तिजोरी में रहा, इतनी सुविधा में, एसी कमरे में, अब मंदिर में तो एसी नहीं है, तो बेचारा रो रहा था कि मुझे कहां तुम डाल रहे हो, इसलिए हमने उसको वापस लाया। देखो मनुष्य इतना समझदार है। तो ये लोभ वृत्ति ऐसी है, हालांकि सबको पता है कि हमारे साथ हमारा शरीर भी नहीं जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। और शास्त्रों में जहां पर भी दान की चर्चा आती है, वहां दान जब आप करते हैं, इसमें आपका कल्याण, जिसको दान देते हैं उसका तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसे तो प्रतिग्रह का दोष लगता है। और प्रतिग्रह दोष को दूर करने के लिए बड़ा भजन करना पड़ता, उपासना करना पड़ता है। आप तो कुछ भी द्रव्य दान दे दिए मंदिर में, अब मंदिर में जाने के बाद बड़ा भारी दायित्व तो उस मठाधीश के पर आ जाता है। यदि उसका हम सत्कार विनियोग किए तो ठीक है, अन्यथा जो है बड़ा ही दुर्गति होती है। एक पौराणिक कथा है इसी प्रसंग में। एक बार इंद्र पृथ्वी लोक में ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। वैसे देवता लोग आते हैं यहां की भी, मतलब की खबर लेने के लिए कि संसार में कैसी व्यवस्था चल रही है। इंद्र घूमते घूमते बहुत दूर जंगल में पहुंचे। जंगल में क्या देखते हैं कि एक चांडाल कौवे के मांस को पका करके और शराब डालकर जूते से ढक देता है। इंद्र देख रहे थे। इंद्र को बड़ी हैरानी हुई कि कौवे का मांस शराब डाल दिया, जूते से ढक दिया, इससे बड़ा पवित्र क्या हो सकता, किससे बचाने के लिए ये जूता से ढका। उन्होंने पूछा, काक मांसम सुरासिक्तम हिपानदभ्याम चादित इंद्र पृच्छति चांडालम किम अमेध्यमतः परम। इंद्र ने पूछा, अये चांडाल किम अमेध्यम अतः परम, इससे बड़ा अपवित्र क्या चीज है जिससे बचने के लिए तो इसको जूता से ढक रहा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया चांडाल ने। उसने कहा कि
गो द्विज।

0: गवाम वृत्तिम हरंतीम हारयंती च तेषां पादोरज भीत्या ह्युपानद्भ्याम चछादितम मया। चांडाल ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण देवता, मैं तो इतना धर्म कर्म की मानसा कर नहीं सकता, जानता नहीं हूं, पर हमने महापुरुषों से श्रवण किया है, गो द्विज गवाम वृत्तिम, देव द्विज गवाम, देवताओं के, द्विजों के और गौओं के, वृत्ति मतलब आजीविका को, जो हरण करते हैं या हरण करने में सहयोग करते हैं, हरंती हारयंती च, उनके पाद रज के भय से हमने इसको ढका है। मतलब इससे भी अपवित्र है, जो लोग ऋषियों का जो विधान है कि दशांश धन का विनियोग देवाचन में करे, ऋषियों की सेवा में खर्च करे, तो उनके पाद रज के भय से मैं इसको ढक रखा हूं। तो नारायण, हम लोग जो है ये लोभ वृत्ति से बहुत कुछ जो है अनर्थ कर डालते हैं। इसी बात यहां पर फड़ीना से कहा, यदि आप जीवन में भगवान शंकर को अपनाते हैं तो चाहे संशय वृत्ति हो या लोभ वृत्ति हो या अभिमान वृत्ति हो, अभिमान वृत्ति है तो समझो कि ये भगवान शंकर के सिर का भूषण बन जाता है, और संशय वृत्ति है तो ये समझो श्रवण करने से, शास्त्रों का श्रवण करने से ये कान का भूषण बनता है। स्वाध्याय कितनी महिमा है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय और प्रवचन के श्रवण करने से इष्ट देवता का संप्रयोग मतलब कि सानिध्य उपलब्ध होता है, परंतु अहरहर होना चाहिए। जिस वहां पर वाचस्पति मिश्र ने उसके व्याख्यान में लिखा है तत्व वैशादी टीका में कि जिस प्रकार से हम भोजन हर दिन करते हैं, भी भोजन बिना कि आदमी रह नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान से पहलवान हो वह भी जो है भोजन जरूर करता है। इसी प्रकार से अपने जीवन में भोजन की तरह से स्वाध्याय को अंग बना ले। जैसे भोजन से हमारा स्थूल शरीर पुष्ट होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भोजन है स्वाध्याय। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो कि प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो इसका आहार है स्वाध्याय प्रवचन। जैसे भूखा व्यक्ति कुछ भी जो है अनाप शनाप खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है, ऐसे यदि हम इस सूक्ष्म शरीर का खुराक जो स्वाध्याय प्रवचन है उसको नहीं करेंगे तो निश्चित ये सूक्ष्म शरीर यदि उत्पटांग बाजार के कामना युक्त क्रोध युक्त पदार्थों को ग्रहण करेगा तो विक्षेप होगा, जो आज हो रहा है। ये प्रेमपुरी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, बंबई वासियों के ऊपर, जिन्होंने दिव्य ज्योति, आप सबको पता होगा ऋषिकेश में जो कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ है, वहां के पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज थे, और उसी कड़ी में षष्ठ पीठाचार्य थे विष्णु देवान जी महाराज। ये दोनों महापुरुष सौराष्ट्र के हुए हैं। विष्णु देवान जी महाराज की तो बहुत बड़ी कीर्ति है, इन्होंने इस 20वीं शताब्दी में उपनिषद के ऊपर बड़ा सुंदर व्याख्यान लिखा है। इस शताब्दी में किसी ने लेखन नहीं उठाई उपनिषद के ऊपर, पर इन्होंने उपनिषद के जो भाष्य है, मंत्र है, टीका, आनंदगिरी टीका, तीनों के ऊपर जो है बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी है, जिस टिप्पणी का नाम है गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी, क्योंकि विष्णु देवान जी महाराज गोविंदानंद के शिष्य थे। तो गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी है जो कि उपनिषद के मंत्रों को, शंकर भाष्य को और आनंदगिरी टीका के ग्रंथियों को, जो बहुत कठिन है, रहस्यात्मक बातों को उनका व्याख्यान स्पष्ट करता है। उच्च कोटि के महापुरुष हो चुके, और ऐसे महापुरुष थे, आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं, राजस्थान फलौदी एक स्थान है, शहर है, मैं गया हूं स्वयं। फलौदी की घटना है, लगभग 50 वर्ष हो गया होगा, फलौदी गए हुए थे महाराज जी। वहां पर बड़ी भीषण गर्मी थी, चतुर्मास कर रहे थे, पूरे 4 महीने में एक बूंद वर्षा नहीं हुई। फलौदी वासियों ने महाराज के पास आए, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बिना वर्षा के सारी खेती समाप्त हो गई, अन्न के लिए हम भटक रहे हैं, आप कुछ कृपा करें। महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा करो, कारीरी याग करो, याग से वर्षा होती है। महाराज जी की आज्ञा से याग कार्य संपन्न होने लगा। याग जो है पूरा संपन्न हो गया, फिर भी वर्षा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि हमने कर्ज करके पैसा लेकर इतना बड़ा भारी यज्ञ किया, पर एक बूंद वर्षा नहीं, उल्टा हो गया, ऋण भी हो गया, वर्षा भी नहीं हुई। महाराज ने कहा कि धैर्य धारण करो। सबको यज्ञ मंडप से बाहर कर दिया, स्वयं अकेले अंदर गए और अंदर जाकर के कुछ किन्नी मंत्रों से उन्होंने आहुति डाली। आहुति डालते ही तत्काल, मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, आकाश में धुआं की तरह से बादल आ गया और इतनी वर्षा हुई कि उस वर्षा से आज भी वहां का तालाब लबालब भरा रहता है। देखो महापुरुषों की ऐसी कृपा होती है। उच्च कोटि के विद्वान भी थे और भगवत तत्व को उपलब्ध महापुरुष भी थे। तो उसी कड़ी में ये प्रेमपुरी महाराज हुए हैं, जो कि ऋषि के हिमालय के कल्प वृक्ष को यहां पर बंबई ला करके बीजारोपण किया। एक कल्प तरु का अर्थ होता है, कल्प का अर्थ होता है समर्थ। जो कल्प के दो अर्थ होते, यदि शास्त्रों को देखे ना तो कल्पते का अर्थ होता है समर्थ्यते, जो समर्थ है कल्प शब्द का। दूसरा कल्प शब्द का अर्थ है कल्पना भी, और तरु शब्द में त्रि संप्लवन तारणयो धातु है, तरंती तारणी तरु, जो स्वयं तरकर दूसरों को तारे पार लगाए उसका नाम तरु होता है। तो जो मनुष्य प्रेमपुरी महाराज जी का लगाया हुआ जो कल्प वृक्ष है, ये प्रेमपुरी आश्रम बंबई में, इसके आश्रय में, इसका आश्रय ग्रहण करता है, मतलब स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करता है, उसको वे स्वयं तारते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जब आप भगवान के शरण हो गए तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें पार लगाना, पर हमें निकट आना पड़ेगा। शंकर भाष्य में एक दृष्टांत बार बार आता है कि ठंडी से कोई पीड़ित व्यक्ति है, कांप रहा है भयंकर, पर जब तक वह अग्नि के पास नहीं आएगा तब तक अग्नि समर्थ होकर के भी उसके कंपन को, शीतलता को दूर नहीं कर सकती। समीप जाएंगे तब जाके अग्नि उसके ठंडी को, शीतलता, कंपन को दूर करेगी। ऐसे ही जब हम इस कल्प वृक्ष का आश्रय लेंगे, आश्रय लेने से लोक परलोक दोनों ही सुधरता है। तो यहां पर देखो फड़ीना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो एक सीमित अहंकार अभिमान है, अभिमान हमेशा सांप तरह से फुफकारता है, और ये जो जगत का सांप यह काट ले तो केवल एक जन्म बेकार होता है, परंतु ये जो सीमित अहंकार अभिमान है इसके डंग से तो हजारों जन्म खराब हो जाते हैं। तो ये फड़ीना का अर्थ है आपका अभिमान, और दूसरा जो है संशय सर्प, तीसरा लोभ सर्प, ये भी आभूषण बन जाते हैं भगवान शंकर के पास जाने के बाद। कपालम, इस शब्द है कपालम का अर्थ होता है ये जो हमारा गर्दन के ऊपर भाग है। कपाल में दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, एक जीभ है और त्वचा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्द श्रवण करते हैं कान से, गंध का ज्ञान होता है नाक से, आंख से रूप को देखते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है, और जीभ से हम विवेक करते हैं, बोलते हैं। जितना स्पर्श का ज्ञान कपोल से होता उतना अन्य भाग से नहीं होता है। ये जो कपाल है जो ज्ञानेंद्रियों का साधन है, ज्ञानेंद्रियों मतलब कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो 5 का ज्ञान होता है, इस ज्ञान को करने के यंत्र यहीं पर फिट हुए हैं। तो इस ज्ञान का भी जो ज्ञान करता है वही कपाल है, इसीलिए हम लोग वेदांत में कहते हैं साक्षी भाष्य। तो जो शिव साक्षी है उसी के द्वारा हमारे ज्ञान का भी ज्ञान होता है। इसको घटा लीजिए, जैसे आप आंख से रसगुल्ला को देख रहे हैं, इसके बाद कान शब्द आपने उसका मूल्य श्रवण किया, हाथ से आपने पैसा देकर खरीद लिया, इसके बाद आप लाकर उसको खाते हैं। इसमें सारे इंद्रियों का उपयोग हो गया। आपने हाथ से पैसा दे के खरीदा, आंख से आपने देखा, कान से मूल्य सुना और मुख में डाल लिया, जीभ से खा लिया। तो पांचों ज्ञानेन्द्रियों का जो उपयोग हो रहा है, इस ज्ञानों का, पांचों ज्ञानों का जो ज्ञान करता है, जिसके द्वारा स्मृति बनी रहती है। महीने के बाद भी आपको स्मृति आती है कि अमुक जगह हमने अमुक रसगुल्ला खाया था। इंद्रियों के भिन्न भिन्न होने पर भी पांचों ज्ञानों का साधन जो है, इन ज्ञानों का भी जो ज्ञान है, वही समझो कपाल है, वही भगवान का एक खप्पल समझिए। इति यत, इतना ही भगवान का ये घर गृहस्थी चलाने का साधन है। एक भक्त भगवान शंकर की उपासना किया बहुत लंबे समय। भगवान शंकर प्रसन्न होकर जब वरदान देने के लिए आए, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, मैं वरदान तो मांग लूं, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू, आप ही बताओ कि मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा कि ऐसा है, तुझे मैं त्रैलोक्याधिपति बना देता हूं, पूरा साम्राज्य दे रहा हूं। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे संसार का राजा बना देंगे, परंतु पहले आप तो राजा बन जाओ, आप तो शमशान में रहते हो, भिखारी हो, मुझे क्या राजा बनाओगे, जो आपके पास है वह दीजिए मुझे। भगवान बहुत हैरान हुए, बोले आश्चर्य की बात है। बोले अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तू राजा नहीं बनना चाहता है ना, तो ऐसा अपनी पत्नी के लिए कुछ सोना चांदी मांग के ले जा, तुझे नहीं चाहिए पर पत्नी को तो चाहिए। बोले ठीक है, सोना चांदी मुझे भी चाहिए, परंतु आपके पास तो सोना चांदी है नहीं, आप तो कान में भी सांप लपेटे हो, सिर पर भी सांप, हाथ भी सांप, पहले तो आप सोना चांदी को धारण करो, मुझे क्या दोगे सोना चांदी, आपके पास ही नहीं है। भगवान शंकर बोले बड़ा ये जो है विलक्षण भक्त है। भगत ने कहा कि जो आपके पास है वही मुझे प्रसाद रूप से दीजिए। भगवान का ऐसा है ना, तुझे मैं बड़ा सुंदर सोने के लंका के समान राज महल बना देता। बोले कि ठीक है, परंतु आप तो संसार में रहते हो, यदि आपके पास महल होता, मकान होता, तब तो मुझे देते, स्वयं तो संसार में रहते हो, तो मुझे क्या दोगे बना के महल। भगवान शंकर बोले कि ये तो ऐसा भगत है कि बिना मैं वरदान दिए जा नहीं सकता, कि कुछ लेने को राजी नहीं। अंत में कहा कि ठीक है, तुझे बढ़िया वाहन देता हूं। बोले कि ठीक है, वाहन देंगे, पर पहले आप तो वाहन रखो अपने पास, आपके पास बूढ़ा बैल, ये बूढ़ा बैल किस काम आएगा, पहले आप वाहन रखो तो मुझे देना। भगवान शंकर परेशान हो गए, बोले कि ये तो मुझे परेशानी में डाल दिया, तपस्या किया पर जो देता हूं उसको स्वीकार नहीं करता। भगवान शंकर बोले भाई तू ही बता मैं तुझे क्या दूं। बड़ा सुंदर बोला कि बस आप अपने चरणों की भक्ति दो, क्योंकि हमने सुना है कि नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। यदि आप मुझे ऐश्वर्य देंगे, धन देंगे, राजा बना देंगे, तो मैं धन से मदान हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा, और आपके चरणों की भक्ति रहेगी तो मैं कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि धन पद का जो अहंकार, इससे मनुष्य भटक जाता है। देखो भगवान शंकर की जो उपासना है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सुरास ताम ताम रिद्धिम, इतने भी देवता लोग हैं, ये सारे देवता भगवान की आराधना करके ताम ताम रिद्धि उन ऐश्वर्य को धारण करते हैं। भवद्भुत प्रणिहिता, जो भगवान के कृपा कटाक्ष विहित होता है, और अंत में लिखा नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो स्वात्मा राम है, जो अपने स्वरूप में रमण करता है, वह कभी भी विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं होता है। स्वरूप मनुष्य रमण तो करता है, परंतु अज्ञानी जीव संसार में रमण कर रहा, हमेशा संसार के विषयों से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये बड़ी भारी भ्रांति है। और ये भ्रांति अनादि काल से चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि बड़ा सुंदर मकान बना लो, जो है बैंक बैलेंस कर लो, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, आज्ञाकारी बेटा हो, 10-20 नौकर हो, फिर तो आराम से जीवन बीतेगा। ऐसी व्यवस्था करते करते बुढ़ापा आ गई, अब जो होना चाहिए वह भी नहीं रहा, जो हमारा स्वास्थ्य है, इंद्रियों का ऊर्जा, वह भी समाप्त हो जाता है। जब हम सुसुप्ति में जाते हैं, सुसुप्ति में ये मैं भी मर जाता है। हम लोग हर दिन मरते हैं, सुसुप्ति में जब मनुष्य जाता है तो जाने के बाद अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, इसका भी भान नहीं होता है। मतलब कि मैं भी मर जाता, समाप्त हो जाता है, वहां केवल एक ही साक्षी चैतन्य रहता है। जिस प्रकार से सुसुप्ति में कोई विषय नहीं है, न विषय से संबंधी द्रव्य है, न ही वहां जो आपका शरीर शरीर के साथ संबंध है, तब जाकर परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। वही अवस्था जागृत में बन जाए, मतलब जागृत में भी तमाम व्यवहार करते हुए अपने आपा को, मैं को संसार से पृथक करके विवेक करके जाने, जिसको हम कहते हैं पंच कोष विवेक प्रक्रिया। मैं अन्न में नहीं, प्राण में नहीं, विज्ञान में नहीं, मनोमय नहीं, आनंद में नहीं, इन पांच कोषों से अलग करके जागृत में भी आप आत्मा को जान सकते हैं। पर जागृत में अनेक प्रकार के विषयों के प्रकाश से ये संयुक्त रहता है, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में ये विषयों की रोशनी नहीं होती है। सपना में इंद्रियां जो है अपना काम करना बंद कर देती है, आत्मा स्वयं प्रकाश होता है। सुषुप्ति में भी कोई इंद्रियां नहीं है, शरीर का भान नहीं, पर जागृत अवस्था में इंद्रियों का ही व्यवहार चलता है और मैं पना भी रहता है, इसलिए पृथक करके वह जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए पंच कोष की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है और ये तभी संभव है जब महापुरुषों की कृपा हो। उपकोशल विद्या में प्रसंग आता है कि आचार्या धैव विद्या वृता साधिष्ठम प्रापदिति, आचार्य के श्री मुख से ही विद्या प्राप्त करके वह प्रतिष्ठित होती है। आप यदि कहे कि महाराज जो है आजकल हम बहुत व्यस्त हैं, इतने काम धंधे हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलता है कि प्रेम पूरी आकर स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करें, लोग बोलते हैं ना बहुत से लोग, और तर्क देते हैं, हमको कई लोग मिले वो तर्क देते हैं कि बढ़िया जो है हम इंटरनेट पर जो प्रवचन सुन लेते हैं, है ना जी, सीडी चला लेते हैं, कैसेट सुन लेते हैं। देखो मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात बोल रहा हूं, चाहे न्याय दर्शन हो या व्याकरण, दोनों दर्शन की जो आचार्य की परीक्षा होती है उसी में ग्रंथ है शक्तिवाद, दोनों को परीक्षा देना पड़ता है। आचार्य क्लास में पढ़ाया जाता है, उस शक्तिवाद में विचार किया है कि शक्ति तत्व क्या है, तो वहां पर लिखा ईश्वर इच्छैव शक्ति। यहां शक्ति शब्द का अर्थ कोई पावर नहीं लेना, शक्ति शब्द का अर्थ है कि किस शब्द के सुनने के बाद क्या ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए ये घट शब्द है, घट शब्द की शक्ति है गोल मटोल पदार्थ में, ये माला शब्द है, तो माला शब्द की शक्ति है इस तरह से अनेक प्रकार के फूलों में शक्ति है, फूलों को लिया धागे में बांध जिसका नाम माला है। इसी प्रकार से शक्ति किसे कहते हैं तो बतलाया ईश्वर के इच्छा का नाम शक्ति है। ईश्वर ने संकल्प किया कि अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से श्रोता को ऐसा ज्ञान हो, इसी का नाम शक्ति है। जब हम हाथी बोलते हैं तो हाथी शब्द की शक्ति है बड़े भारी जानवर में, अपने आप हमारे मस्तक में आकार प्रकार बन जाता है, और यह सामर्थ्य न आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, न जो है टीवी पर, न सीडी पर, न कैसेट पर। भाई जो वक्ता है चेतन है, आचार्य गुरु प्रवक्ता चेतन है, वह अंतःकरण में संकल्प करता है कि अस्मात् पदात् वाक्यात् अयम अर्थो बोधव्यः श्रोतुः, हमारे श्रोता इस वाक्य से ऐसा अर्थ समझें, इस संकल्प होने के कारण से आचार्य के समक्ष बैठने तत्व बोध हो जाता है, पर टेलीविजन के अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि वो संकल्प करे कि इस हमारे वाक्य से हमारे दर्शक को श्रोता को ऐसा बोध हो जाए। इसीलिए जो है ना उससे तत्व ज्ञान की आशा करना ये दिवा स्वप्न है। इसीलिए जो है ना मैं आपको कह रहा हूं ताकि जो है हम लोग सन्मार्ग में प्रवृत्त हो। अब देखो समय पूरा हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सबकी रति मति गति भगवान के चरणों में लगी रहे और आप हमेशा स्वाध्याय प्रवचन का लाभ उठाते रहें। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radio's 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 21. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்தி சமத்தா வாசல் மெய் மாதாவ் ஸ்னேமி பெஹனோ ஆப் சர்வந்து தைத்திரியோ ஆரண்யக் கீ தைத்திரிய உபநிஷத் கோ லேகர் கே பிரசங்க சல்லா ஹே மங்களாச்சர் சம்பந்தி ஜிஸ்கே அந்தர்கத் अभी तक ये बतलाया कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्व ऋषियों ने जिस वेदांत रहस्य को पद वाक्य और प्रमाणों से पुरस्कृत करते हुए हमारे लिए कथन किया, ऐसे उन ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूं। आगे पुनः संकेत कर रहे हैं, तैत्तिरीय सारस्य कहने लगे, यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसका सार क्या है, अर्थात इसका तत्व या इसका मूल जो है वो क्या है। उस सार को जानने वाले कौन जानने वाले हैं, तो उसके लिए संकेत किया विस्पष्टार्थ रुचि नाम। किनके लिए कहा, किनकी रुचि बतलाई, तो कहने लगे जो इसको सार को जानने वाले हैं। अब उस सार को जानने की है रुचि जिनकी, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम सार को प्राप्त करें, हम तत्व को प्राप्त करें, हम मूल को प्राप्त करें। यह जिज्ञासा तो प्राणी मात्र की, ऐसा नहीं है कि कोई प्राणी नहीं चाहता कि मुझे यह नहीं चाहिए, सभी चाहते। अब चाहने की स्थिति क्या है, तो देखो इसके लिए बड़ी मोटी भाषा में, जो भी प्राणी यह अनुभव करता है कि मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, जिसको भी ये अनुभव हो रहा, तो जिसे अपनी सत्ता का, अपने होने पने का बोध है, और जो भी जीवंत प्राणी है उस सबको ही अपने होने पने का बोध है, ऐसा नहीं कि उसे बोध नहीं। अब जब उसे अपने होने पने का बोध है, तो अपना माने अहम करके मैं हूं। अब मैं हूं तो मैं हूं के साथ में जुड़ा हुआ है क्या, तो रुचि। वो रुचि क्या है, तो वो प्राणी मात्र की रुचि ये है, मैं हूं और मैं बना रहूं। ये कोई नहीं चाहता है कि मैं हूं और मैं न रहूं। समस्त प्राणियों के हृदय में, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों न, जिसे यह बोध है मैं हूं, तो उसकी एक गहरी अभिप्सा है, उसकी यह रुचि है कि मैं हूं और मैं बना रहूं। और इसी के साथ में और थोड़े आगे बढ़े तो क्या है, मैं हूं, मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं। तो ये जो है प्राणी मात्र के अंतर्गत ये रुचि बैठी हुई है। कहने लगे ठीक, तो मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं। दूसरी एक अभिप्सा और है, वो अभिप्सा क्या है, मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं और भी कुछ जानता हूं। कोई अपने को अज्ञानी कहने के लिए तैयार नहीं, संसार के अंतर्गत किसी को भी देखें तो वो कहेगा क्या मुझे पागल समझते, इसका मतलब क्या, वो अपने को बोधवान जानता है। तो कोई भी अपने को अज्ञानी स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो वह मैं हूं और उसके साथ में एक मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास जानकारी है और मेरा ज्ञान बना रहे। ये कोई नहीं चाहता है कि मेरा ज्ञान समाप्त हो जाए, मेरी जानकारी समाप्त हो जाए। तो मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं, ठीक इसी प्रकार से मैं जानता हूं, जानता रहूं और मुझे कोई बेवकूफ न बना सके। ये प्राणी मात्र की अभिलाषा। तीसरी बात और आती है, मैं सुखी हूं और सुखी बना रहूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं। तो अब देखो, किसी भी प्राणी के हृदय में आप देखें तो ये तीन जो है रुचियां अभीप्साएं उसके हृदय में विद्यमान है। सभी का अभाव हो जाए पर इन अभीप्साओं का अभाव नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला, मैं हूं और मैं बना रहूं, मुझे कोई मिटाए नहीं, माने सत की अभीप्सा, अपनी सत्ता की, अपनी विद्यमानता की अभीप्सा। और विद्यमान कौन होता है, जो सत पदार्थ होता है। सत का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव। तो ये अभीप्सा किसको बतला रही, सत पदार्थ को। दूसरा, मैं जानता हूं, जानता रहूं, मुझे कोई बेवकूफ न बनाए। ये क्या है, ये ज्ञान की अभीप्सा। और ज्ञान कहां रहता है, चेतन में रहता, जड़ में कभी ज्ञान नहीं रहता। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, चित्त पदार्थ। तीसरी बात है, मैं सुखी हूं, सुखी बना रहूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं। ये क्या है, तो जो सुख कभी समाप्त न हो, जिसकी तुम चाहते हो कि कभी छीने नहीं तथा समाप्त न हो, तो ऐसा जो अनवर्थ सुख है उसका ही नाम क्या है, आनंद। उसी को क्या कहते हैं, आनंद। तो ये क्या निकला, प्राणी मात्र के हृदय में ये स्वाभाविक जो रुचि है वो रुचि क्या सिद्ध